अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

श्री रामलला भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की, श्री कौशल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रानंदन भगवान की, श्री चारो भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की, प्रातः श्रृंगार आरती की, जय जय श्री सीताराम।

विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार श्रियावर रामचंद्र जी की जय। श्री अयोध्या राम जी लला जी की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री रमापति रामचंद्र जी की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदं निकाम श्याम सुंदरं भवाम्बुनाथ प्रफुल्ल कंजलोचनं मदादि दोषमोचनं कलंब बाहु विक्रम प्रभो प्रमेय वैभवं शंघचाप सायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडनं महेश चाप मुनि

भर्जनम भवबीजानाम मर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूतानाम राम राम इति गर्जनम श्री सीताराम नाम महाराज की। संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत राम नाम की गर्जना भाग जाए यम दूत श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री राम लला भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

श्रोताओं, आज सोमवार है, 10 अगस्त 2026, पंचांग शक संवत 1948 के श्रावण महीने की 19वीं तिथि। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण प्रारंभ होता है। आपका उद्घोषक इकबाल कादिर उपस्थित है और अपनी ओर से आपकी ओर हार्दिक अभिनंदन पेश करता है। हम सभी यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा की कामना करते हुए आज के इस विशेष प्रसारण का आरंभ करते हैं।

जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का आज 39वां दिन है। हम अपनी ओर से सभी यात्रियों का स्वागत करते हैं और सभी सुनने वालों का भी स्वागत करते हैं। और आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करें तो पहले सत्र में हमारा यही उद्देश्य रहता है, यही हमारा

प्रोग्राम रहता है कि हम घाटी के विभिन्न भागों में हमारे जो संवाददाता हम मौजूद हैं उनके साथ बात करें। सबसे पहले आज श्रावण मास का आखिरी सोमवार आस्था और शिव भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। आज का दिन हिंदू धर्म में खास धार्मिक महत्व रखता है और सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हिंदू पंचांग में तिथि और त्योहारों की तारीखें इलाके और पंचांग की रिवायत के मुताबिक बदल सकती हैं, और जो हम आपको तफसील बताने जा रहे हैं वो तफसील शिमाली हिंद के हवाले से और उनकी रिवायत के मुताबिक है। याद रहे, शिमाली हिंद की रिवायत के मुताबिक जो हम आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं वो शिमाली हिंद के हवाले से है। आज का दिन हिंदू धर्म में खास धार्मिक महत्व रखता है। आज 10 अगस्त को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की त्रिदशी तिथि है और शिमाली भारत की परंपरा के मुताबिक ये श्रावण मास का आखिरी सोमवार भी है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित एक निहायत पवित्र महीना माना जाता है, इसलिए इसके सोमवार का खसूसी महत्व होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इस महीने का हर एक सोमवार। और हर एक सोमवार को भक्त कोशिश करते हैं कि वो व्रत रखें, दिन भर भूखे प्यासे रहें और भगवान की पूजा करें, उनकी समक्ष दुआएं करें ताकि उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि और एक शांति का जो है माहौल बना रहे, उनके घर परिवार में शांति का माहौल बना रहे। सब लोग इन्हीं दुआओं में पूरा दिन अपना व्यतीत करते हैं, अपना पूरा दिन बिताते हैं, और हमें भी चाहिए कि अपने जो हमारे बनाने वाले हैं, हमारे पालनहार हैं, जिस किसी धर्म से हम ताल्लुक़ रखते हैं, जिस किसी बनाने वाले को, जिस किसी भी भगवान को हम मानते हैं, हमें उनकी हमेशा इबादत करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए अपने धर्म के अनुसार, और तब जाकर हमारा जीवन सफल होगा। और पहले सत्र में हम कोशिश करते हैं कि हम अपने जो संवाददाता हैं उनके साथ बात करने की कोशिश करें। सबसे पहले हमारा टारगेट रहता है जम्मू, जहां से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब के साथ हम बात करने की कोशिश करते हैं। और आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 39वां दिन है और आज के दिन के हवाले से आगे हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हम ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स और अपडेट्स के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे जल्दी।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे जम्मू के संवाददाता जावेद मेहराब। जावेद, आपका खैर मकदम है आज के इस प्रसारण में, और आपसे सबसे पहले यही सवाल कि आज यात्रा का 39वां दिन है, यात्रा अब धीरे धीरे अपने इख्तिताम की ओर, अपने संपन्न की ओर चल रही है, तो कैसा माहौल है जम्मू में और क्या है आपके पास ताज़ा रिपोर्ट्स यात्रा के हवाले से?

राज्यों के शहर जम्मू में तमाम तरह के जो प्राचीन मंदिर है, तमाम जगह पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर यहाँ प्राचीन मंदिर है, वहाँ पूजा अर्चनाएं और स्थानीय लोगों के साथ साथ जो श्रद्धालु हैं माता वैष्णो देवी के, और उसके अलावा जो श्रद्धालु यहाँ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, वो यहाँ के स्थानीय मंदिरों में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पूजा अर्चनाओं में पूरी तरह से पहुंचते हैं और एक अच्छा माहौल बना हुआ है। वातावरण बिल्कुल पूजा अर्चनाओं का है, भजन कीर्तन का है, निवास स्थान पर भी इसी तरह का माहौल है। यहाँ भी तमाम तरह के प्रबंधन और जो सुविधाएं श्रद्धालुओं को रखी गई है उन्हें पूरी तरह से अभी भी जारी रखा गया है। और यहाँ इस परिसर में जहाँ श्रद्धालु न सिर्फ उस प्रबंधन और उन सुविधाओं को पूरी तरह से इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बल्कि उन्हें ये मौका भी मिल रहा है कि तो उन पूजा अर्चनाओं उनका हिस्सा भी बनने का, और उसके साथ साथ जो यहाँ स्थानीय कलाकार है, जो जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय कलाकार है, वो यहाँ भजन कीर्तन और जो श्रद्धालुओं के लिए खास तौर पर उनके उनको जो उनके लिए पूजा अर्चनाओं में पूरी तरह से उनका साथ भी दे रहे हैं और मगन भी रख रहे हैं इस तौर पर भगवान भोलेनाथ के सावन के महीने में। तो एक अच्छा वातावरण बना हुआ है, क्योंकि ये जो निवास स्थान भगवती नगर है ये तरी के तट पर बना हुआ बहुत खूबसूरत जगह पर बना हुआ है। और यहाँ हालांकि कई बार गर्मी उमस जो हालांकि बारिशों के बावजूद भी जो दर्जा हरारत है वो अपनी जगह है, उमस अपनी जगह है, बीच में जब बारिशें गिर रही हो तब थोड़ा मौसम हल्का सा दर्जा हरारत कम होता है, लेकिन उसके अलावा जो दर्जा हरारत और उमस है वो बराबर जारी है। लेकिन खास तौर पर इस जगह पर, क्योंकि यहाँ इस तट पर सुबह के टाइम मौसम बहुत सुहाना होता है और हवाएं बहुत खूबसूरत चलती हैं, जिससे श्रद्धालु भी मनमोहित होते हैं, खुश होते हैं, और गर्मी और उमस के मौसम में वो अपना जो है वो मजा भी लेते हैं यहाँ इस खूबसूरत जगह का। और उसके साथ साथ जो इस बार जो बनाया गया था तवी रिवर फ्रंट का, इसीलिए उसी को देखते हुए यहाँ तवी रिवर फ्रंट का एक बहुत बड़ा स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ महाआरतियां हुई इस बार, हर रोज महाआरतियां हुई जिनमें श्रद्धालुओं ने भरपूर हिस्सा भी लिया, और उसके अलावा जो यहाँ माहौल है इस पूरे तट का उसका भी उन्होंने लुत्फ लिया। और यहाँ इस बार उन्हें मौका मिला खुले तरीके से बैठने का, यहाँ अलग अलग कनोपीज लगाई गई थी चिकित्सा की, योगा की, आयुर्वेदिक जो चिकित्सा है हमारी उसकी अलग से, एलोपैथिक जो चिकित्सा हमारी उसकी अलग से, तो अलग अलग विभाग जो है वो रखे गए थे श्रद्धालुओं की खास तौर पर सेवा के लिए। तो ये एक अच्छा माहौल बना हुआ था और इस माहौल में आज भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है, श्रद्धालु यहाँ हर बाजार चौक में मिलते आपको नजर आएंगे। और उसके अलावा जो यहाँ के स्थानीय मंदिर है खास तौर पर उनमें खास तौर पर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इधर मौसम विभाग ने यहाँ जम्मू के निवास स्थान से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग और पवित्र गुफा के द्वार तक मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश और खासतौर पर तेज बारिश का अनुमान भी जताया है, जिसके चलते खासतौर पर पहाड़ी श्रृंखलाओं में तेज बारिश का अनुमान पूरी तरह से बना हुआ है। उसी के चलते फिलहाल प्रशासन ने पवित्र श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा को रवाना होने की अनुमति ना देने का फैसला किया है, और ये फैसला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और हिफाजत के मद्देनजर उठाया गया है। और यहाँ देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालुओं की जो संख्या है अभी तक अगर हम कहें तो 4,80,000 को भी पार कर चुकी है, जिससे पवित्र श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रा की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था प्रबंधन और उनके पूरे इंतजाम के लिए तमाम तरह की कोशिशों को यकीनी बनाना किसी चैलेंज से कम नहीं। ये एक अपने आप में एक ऐसी यात्रा है
जहाँ प्रशासन और प्रशासन से जुड़े जितने भी विभाग हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो, जल विभाग हो, और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट का महकमा है, उन्होंने रोस्टरों के

0: हिसाब से यहाँ 2400 घंटे ड्यूटियां दी है, और उसके अलावा खास तौर पर यात्रा से जुड़े वो हजारों जवान सिक्योरिटी के फोर्सेस के जवान जो हैं वो रात दिन इस पूरे शहर में तीर्थ यात्रियों की हिफाजत के लिए घंटों खड़े रहे हैं, घंटों उनकी हिफाजत में, और जो तीर्थ यात्रा यहाँ से रवाना होती थी उसे उसी पूरी सुरक्षा कवच के साथ यहाँ से रवाना कर दिया जाता था, और राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पूरी प्राथमिकता के साथ, पहली प्राथमिकता में कहूँ तो तमाम स्थानीय जो ट्रैफिक की आवाजाही है उसको रोक कर इसको पहली प्राथमिकता के साथ चलाया जाता था, ताकि तीर्थ यात्री जल्द से जल्द गाड़ी पहुँच कर बाबा बर्फानी के द्वार तक आसानी पहुंच सके। और उसके अलावा भी जो हम खास तौर पर हम बात करते हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने इस पूरी पहाड़ी श्रृंखलाओं में ट्रैक्स को बेहतर बनाया, इस बार खास तौर पर ट्रैक्स की हिफाजत के लिए भी एक अलग से काम किया गया, ताकि जो ट्रैक्स है वो किसी तरह से खाई की तरफ फुले ना हो, उनकी बाजाबता बैरिकेडिंग हो, और ताकि श्रद्धालु है एक अनुशासन के साथ बाबा बर्फानी के द्वार तक पहुंच सके। और ये सिलसिला अभी भी जारी है, कल भी बाबा बर्फानी के जो श्रद्धालु हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग से दर्शन कर वापस जम्मू लौटे हैं, और जम्मू से विभिन्न माध्यम से, जिस तरह से रेल का माध्यम है, सड़क का माध्यम है, यहाँ पहुंचकर वो अपने घरों को लौट रहे हैं। और खास तौर पर जो श्रद्धालुओं की जो इसमें प्रतिक्रिया है वो प्रशासन का, मैनेजमेंट का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, क्योंकि ये ऐसी यात्रा है जहाँ हर एक तरह के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार उस प्रबंधन और उनकी व्यवस्थाओं को बनाए रखने में पूरी तरह से कामयाब भी रही है, और इसमें स्थानीय लोगों के अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं, बाजार एसोसिएशन, यहाँ की हमारी खास तौर पर मानी और जानी जाने वाली मेहमान नवाजी का ही ये सिला है कि लाखों श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन भी किए हैं, और ये सिलसिला लगातार जारी भी है, अपने आखिरी खंड में है, और बहुत कामयाबी के साथ ये जो यात्रा है जारी है।
1: जी, हम भी यही कामना करते हैं, यही दुआ करते हैं कि ये यात्रा अपने आखिरी समय तक इसी तरह से शांतिपूर्ण तौर पर जारी रहे, और जो भी श्रद्धालु, जो भी बाबा बर्फानी के भक्त यहाँ आने के ख्वाहिशमंद हैं, यहाँ आने की ख्वाहिश दिल में रखे हुए हैं, उनका हम हृदय से स्वागत करने के लिए तैयार हैं, उनकी खिदमत के लिए हम हमेशा से यहाँ खड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तफसीली रिपोर्ट के लिए, आपसे आगे भी बात होती रहेगी।
0: बहुत शुक्रिया।
1: ये थे हमारे जम्मू के संवाददाता जावेद मेहराब, जो यात्रा के हवाले से हमें अपडेट दे रहे थे, इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। हालांकि यात्रा कल और आज फ़िलहाल मौसम की ख़राबी के कारण अस्थायी रूप से रोक दी गई है, और इन्होंने इसमें बात की मौसम की, तो मौसम में हमने कश्मीर में भी देखा कि पिछले कई दिनों से बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से सुबह और शाम का जो टेम्परेचर है उसमें काफ़ी हद तक बदलाव आया है, काफ़ी हद तक गिरावट आई है, और सुबह और शाम में मौसम बहुत ही सुहाना होता है, बहुत ही खुशगवार होता है, लोग घरों से शाम को निकलते हैं अपने प्यारों के साथ टहलने के लिए, घूमने के लिए, और इस मौसम का लुत्फ लेने के लिए भी वो घरों से जाते हैं, मुख्तलिफ सियाती मकामों का वो रुख करते हैं, वहाँ पर अपने परिजनों के साथ, अपने अपनों के साथ समय व्यतीत करते हैं। और श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के जो इंतज़ामात हैं उसमें इन्होंने, हमारे जो संवाददाता हैं जावेद मेहराब, इन्होंने ये बताया कि जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस साल जो श्री अमरनाथ जी यात्रा जाने वाला रास्ता है, दोनों मार्ग, चाहे वो बालतर मार्ग हो या पहलगाम मार्ग, दोनों मार्गों पर बहुत अच्छा काम किया है, और उनके काम की हम सताइश करते हैं, उनको इसके लिए शाबाशी देते हैं। और साथ में इन्होंने ये बताया कि जहाँ जहाँ पर उनको लगता था कि ज़्यादा खाई है, या यात्रियों के फिसलने का खतरा है, या रास्ता ख़राब है, वहाँ पर अच्छा काम किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, या रास्ते में, जैसे हमने वीडियोज़ या फ़ोटोज़ में भी बहुत बार देखा है कि एक अच्छा वातावरण है, एक अच्छा माहौल है, और इस रास्ते को सुरक्षित बनाने के लिए, इस रास्ते पर काम करने के लिए हम प्रशासन का भी हृदय से

आभार व्यक्त करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा 12 महीने हमेशा किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में काम करने के लिए तैयार होते हैं, और चाहे वो छोटी सड़कें हों या बड़ी सड़कें हों, उन पर काम करने के लिए हमेशा वो खड़े रहते हैं। और इस बातचीत को हम यहाँ पर थोड़ा विराम देना चाहेंगे और आपको एक भक्ति पूर्वक भजन सुनवाने की हम यहाँ पे हमने क्यों करके रखा आपके लिए। आप ये भजन सुनिए, आगे हमारी हमारे जो बानीहाल के संवाददाता हैं मोहम्मद तस्कीन, उनके साथ बात होगी। आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने रहिए।

जी श्रोताओ, हम आपका फिर से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं इस विशेष प्रसारण में श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026, जो आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH तथा हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। हम बात कर रहे थे श्रावण मास के आखिरी सोमवार, यानी आज श्रावण मास का आखिरी सोमवार है, और इस परंपरा को मनाने के लिए एक आस्था, एक विश्वास की ज़रूरत होती है। और जो भी हम इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, हमने आपसे पहले ही अर्ज़ किया है, आपके समक्ष ये विनती की है कि ये शिमाली हिंद की रिवायत के मुताबिक है, शिमाली हिंदुस्तान में जो रिवायत है उसके मुताबिक जो भी हम आपको इंफॉर्मेशन इसके हवाले से दे रहे हैं वो है जी, श्रावण के सोमवार को श्रद्धालु सुबह सवेरे स्नान करके साफ़ सुथरे वस्त्र धारण करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं और आराधना करते हैं। कई भक्त इस दिन सोमवार का व्रत रखते हैं और शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, फूल और देगर पूजा सामग्री अर्पित करते हैं। मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति करने से मन को शांति मिलती है और भक्त अपने जीवन में सुख, समृद्धि और मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, भजन कीर्तन और ध्यान भी इसी दौरान ख़ास तौर पर किया जाता है। इस हवाले से हम और भी बात करेंगे और अपने जो संवाददाता हमारे बानिहाल के मोहम्मद तस्कीन, उनके साथ भी राबिता करने का सिलसिला और कोशिश हमारी जारी है। आप इस विशेष प्रसारण का हिस्सा बने रहिए, हम जल्द ही आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे।

जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH और हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। अगर आप इस प्रसारण का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी कोई बात, अपना कोई सुझाव, अपनी कोई शिकायत हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियोज़ के हेल्पलाइन नंबर 9596990954 पर अपनी बात SMS या WhatsApp के ज़रिए हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप ईमेल के ज़रिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID नोट करें, akashwanibaltal@gmail.com। इसी के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाले यात्रियों और बाकी जो भी इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं, अगर उन्हें कोई उनका कोई सवाल है, उनका कोई सुझाव शिकायत है तो वो प्रशासन से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। प्रशासन ने जम्मू और श्रीनगर के लिए 2 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स भी इजरा किए हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। श्रीनगर के लिए टोल फ्री नंबर है 1800-180-7199। इसी तरह से जम्मू के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-7198। और हमारी जो संवाददाताओं से बात करने की कोशिश है, हमारा किसी भी संवाददाता से फ़िलहाल राबिता नहीं हो पा रहा है। जैसे ही हमारा राबिता होता है हम आप तक ताज़ा अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम बात कर रहे थे जो श्रावण मास का आखिरी सोमवार है आज, उत्तर भारत की जो धार्मिक आस्था है उसके मुताबिक, उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। श्रावण मास की महत्वता को समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहलवश विष निकला तो पूरी दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए इन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है।

जाता है। श्रद्धालु भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं, उनकी ताप को शांत करने की परंपरा निभाते हैं। आज के दिन की एक ख़ास बात ये भी है कि श्रावण मास अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए कई भक्त आज के सोमवार को अपनी भक्ति, साधना और व्रत को खास रूप से समर्पित करते हैं। ये दिन इंसान को अपने अंदर झांकने, मन को शांत करने और नेक काम करने की प्रेरणा देता है, जो हर एक इंसान में होनी चाहिए। हमें हर एक दिन अपने अंदर झांकना चाहिए, दिन को या दिन के दौरान हमने जो भी गलतियां की हैं, दिन के दौरान हमने जो भी पाप किए हैं, उन पर हमारी नज़र होनी चाहिए और हमें अपने मन को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए और भगवान से उन पापों का प्रायश्चित करना चाहिए और हमेशा नेक कर्म करने चाहिए। जैसा कि हम बार बार आपसे कहते आ रहे हैं कि हमें अपने बुज़ुर्गों, बूढ़ों, बच्चों या अपने हम उम्र लोगों की इज़्ज़त करनी चाहिए और हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम एक सीधी राह पर चलें, किसी भी इंसान को हमारी ओर से ना कोई कष्ट ना हो, हमारी ओर से किसी इंसान का दिल ना दुखे या बाकी चीज़ें हमें अपने जीवन में धारण करनी चाहिए ताकि हमारे मन को शांति मिले और हमारा जीवन सफल हो।

श्रोता हूँ, अब समाचार सुनने का वक्त है। आइए आकाशवाणी दिल्ली लिए चलते हैं आपको, जहाँ से आप हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू में समाचार सुनेंगे और समाचारों के बाद ये प्रसारण जारी रहेगा और हमारी आपके साथ आगे और भी बातें होंगी, आगे आपके साथ और भी इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। हमारा साथ दीजिएगा।

0: कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन

0: अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: तिरंगा, हर घर तिरंगा।
0: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
3: कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
0: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंह गाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
4: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 121

0: अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
2: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार तीन दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुस जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसलुनिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेल मार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाश ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून टर्फ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले दो दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। आईएमडी ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
5: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन

0: प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है, वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, जेपीएससी के सभी सदस्यों का इस्तीफा, 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नवभारत टाइम्स लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। संसद के मानसून सत्र को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान के अनुसार संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूट सकता है गतिरोध, लोकसभा में आ जाएंगे 4 विधेयक। मेटा को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, दैनिक जागरण की खबर है। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की टर्बुलेंस फ्लाइट के मुख्य पायलट का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट संदिग्ध पाया गया, दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार परीक्षण की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार, जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक डीजीसीए ने उड़ान चालक दल के 2 सदस्यों को ड्यूटी से हटाया। डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा, हिंदुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है। बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस पीपल टू जॉइन हर घर तिरंगा मूवमेंट एंड होइस्ट द ट्राइकलर एट होम्स। India crosses 300 gigawatts of non-fossil fuel-based installed electricity generation capacity. Indian and US Navy's explosive ordnance disposal exercise to begin today at Southern Naval Command in Kochi. Russia proposes railway route to India to reduce dependence on strategically important maritime routes like Strait of Hormuz. And Maharajan Arumuga Pandian clinches silver medal in men's 65 kg category at Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." The Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. In his Man Ki Baat program on Akashwani last month, Mr. Modi urged people to hoist the tricolour at homes.
4: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में शामिल हों और अपने घरों में तिरंगा लहराएं। भारत में गैर रिवायती ईंधन वाली बिजली पैदावार की सलाहियत 300 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। भारत और अमेरिका कोची में जनूबी बहरी कमान में आज धमाका खेज हथियारों के बंदोबस्त की मशक शुरू करेंगे। रूस ने आब नए हुरमुज जैसे दिफाई एतबार से अहम समुद्री रास्तों पर इन्हिसार को कम करने के लिए भारत तक रेल रास्ते की तजवीज रखी है। और महाराजा उरुमुंग पांडियन ने ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा मुहिम में जोशो खरोश के साथ शिरकत करने और विकसित भारत की तामीर में अपने तआवुन के इज्तिमाई अहद का एआदा करने की अपील की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तिरंगा मुल्क की शान है, नीज ये मुल्क के लिए हमेशा अव्वलीन तरजीह देने की तहरीक का एक जामे वसीला है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहते हुए मसर्रत का इजहार किया कि इस साल की काविशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं, क्योंकि इसकी 150वीं सालगिरह है। पिछले महीने आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में जनाब मोदी ने अवाम से अपील की थी कि वो अपने घरों पर तिरंगा परचम लहराएं।
1: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।
0: पेश है एक रिपोर्ट।
2: सिखाफत की वजारत ने कहा है कि इस साल हर घर तिरंगा में मुहिम तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा प्रोग्रामों और मातरम के गीत के जरिए मुल्क भर में सड़कों और घरों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करेंगे। वजारत ने कहा है कि वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह शहरियों को मौका भी फराहम करेगी ताकि वो यौम आज़ादी के त्यौहार के हिस्से के तौर पर कौमी नगमे का गाकर जश्न मना सकें।

0: साल की तकरीबात की एक अहम खसूसियत सूर्य पर तिरंगा होगी, जिसे वजारत ने अपनी नौइयत का एक पहला कदम बताया है, जिसका मकसद दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को तिरंगा की एक आलमी तकरीब में यकजा किया जा सके। वजारत ने शहरियों से अपील की है कि वो अपने घरों में कौमी परचम लहराएं और हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपनी सेल्फीज अपलोड करें। हर घर तिरंगा मुहिम यौम आज़ादी की तकरीबात से वाबस्ता मुल्कीर अवामी शिरकत की एक पहल के तौर पर उभरी है, जिससे शहरियों को कौमी परचम की नुमाइश करने और मुल्क के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार करने का हौसला मिलेगा। आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा मुहिम हुबुल वतनी के जज्बे के साथ शुरू हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बीड, थाने और बुलढाणा समेत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ जिलों में तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा, खिलाड़ियों, एनसीसी कैडेट्स और शहरियों ने पूरे जोश व जज्बे के साथ शिरकत की। थाने में एक साइकिल रैली के जरिए माहौलियात के तहफ्फुज़ और सेहतमंद जिंदगी को फ़रोग दिया गया। खेमगांव में टीवी के बारे में और रैलियों और नुक्कड़ नाटक के जरिए मनशियात से पाक भारत के तई बेदारी पैदा की गई। इस मुहिम का मकसद हुबुल वतनी के जज्बे को फ़रोग देना और यौम आज़ादी की तकरीबात में आवाम की शिरकत की हौसला अफजाई करना है। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: बिहार में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज पटना में एक बड़ी तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया जाएगा। हमारे नामा निगार ने इत्तला दी है कि वजीर आला सम्राट चौधरी इस मुहिम की क़यादत करेंगे।
3: हर घर तिरंगा मार्च आज सुबह 10 बजे से जेपी गोलम्बार से शुरू होगी, जो करगिल चौक तक जाएगी। इसका एहतमाम फन, सकाफत और नौजवानों के महकमे की तरफ से किया गया है। तिरंगा यात्रा में बड़ी तादाद में लोग शिरकत करेंगे। इसी दौरान इस मुहिम के तहत जीविका के जरिए रियासत में हर ब्लॉक को 4000 तिरंगा परचम फराहम किए गए हैं। मुहिम के हिस्से के तौर पर वंदे मातरम के गीत, खून के अतिया के कैंप्स, तिरंगा नुमाइशों, तिरंगा के साथ सेल्फी और तिरंगा रंगोली समेत मुख्तलिफ सरगर्मियों का भी एहतमाम किया जाएगा। पटना से सविता पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: मगरबी बंगाल में हर घर तिरंगा मुहिम के हिस्से के तौर पर आज कोलकाता में तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। वजीर आला शुभिंदु अधिकारी जुलूस की क्यादत करेंगे, जो घोस्तो पलसरानी से दोपहर में शुरू होगी और विक्टोरिया मेमोरियल पर खत्म हो जाएगी। मुख्तलिफ महकमों के वज़रा, इंतजामिया के सीनियर अहलकार और शहरियों की एक बड़ी तादाद की इसमें शिरकत मुतवक्के है। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की है तकरीबन 50,000 लोग यात्रा में शिरकत करेंगे। कोलकाता ट्रैफिक पुलिस ने जुलूस के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। मणिपुर ने भी मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ हर घर तिरंगा मुहिम के इनेकाद में शिरकत की। यह प्रोग्राम 17 अगस्त 2026 को इख्तिताम पजीर होगा। इस मुहिम का मकसद भारत के इतिहाद का जश्न मनाना और तिरंगा के तई गहरे एहतराम का मुजाहरा करना है। इस मुहिम के दौरान शहरी अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे। मणिपुर के वजीर आला यमनाम खेमचंद मगरबी इम्फाल के संगजिमी में अपनी रिहायशगाह से इस मुहिम में शिरकत करेंगे। उन्होंने अवाम से पुरजोर अपील की है कि वो सबसे पहले खुद को भारतीय, उसके बाद मणिपुरी समझें। भारत गैर रिवायती ईंधन पर मबनी बिजली की पैदावार 300 गीगावाट की सलाहियत से आगे बढ़ गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
0: इस उसूलियाबी से 2030 के 500 गीगावाट सलाहियत के निशाने में से 60% से ज्यादा हिस्सा पूरा हो चुका है। नई और बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई की वजारत ने कहा कि मुल्क की बिजली पैदावार की कुल सलाहियत में गैर रिवायती ईंधन पर मबनी बिजली सलाहियत का हिस्सा 54% से ज्यादा हो चुका है। वजारत ने यह भी कहा कि साफ सुथरी तवानाई की पैदावार में बहुत से शोबों का तआवुन रहा है। गैर रिवायती ईंधन की मजमूई सलाहियत में शमसी तवानाई इस मैदान की तरक्की में पेश पेश रही। वजारत के मुताबिक 2025-26 के दौरान मुल्क में गैर रवायती ईंधन की 55.29 गीगावाट की सलाहियत का इजाफा हुआ है। बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई की सलाहियत में भी तेज़ रफ्तार तरक्की का पता चलता है। 2014-15 में यह सलाहियत 191 अरब यूनिट थी, जबकि 2025-26 में ये 477 अरब यूनिट से ज़्यादा हो गई। न्यूज़ डेस्क से आनंद की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
1: लोकसभा में आज 4 बिल पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनलिज्म में इस्लाहात का 2026 का बिल, कानों और मादनियात के फरोग और मुतालिका जाब्तों में तरमीम का 2026 का बिल, केरला का नाम तब्दील किए जाने से मुतालिक 2026 का बिल और इमदाद बाहमी के फरोग में कौमी कॉरपोरेशन में 2026 का बिल शामिल है। राज्यसभा में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बैंकरों के रिकॉर्ड के शवाहिद से मुतालिक 2026 का बिल पेश करेंगी। इसमें बैंकरों के रिकॉर्ड को कानूनी शवाहिद के तौर पर पेश करने और इसे मौजूदा दौर की डिजिटल बैंकिंग के कामकाज के मुताबिक बनाने के लिए कहा गया है। ऐवान में ٹیکسیشن اور دیگر قوانین میں ترمیم کا 2006

0: 26 का बिल भी पेश किया जाएगा। इस बिल में रकम की अदायगी और तस्फीये के निजाम से मुतालिक 2007 के कानून, इनकम टैक्स 2025 के कानून और मालियात से मुतालिक 2026 के कानून में तरमीम के लिए कहा गया है। इन दोनों बिलों को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से पेश किया जा रहा है। JPSC JSSC इम्तहानात में मुबैना बदउनवानियों पर तलबा और झारखंड सरकार के दरमियान तीसरे दौर की बातचीत के बावजूद तातुल अब भी जारी है। तलबा ने हुकूमत की तजावीज को पूरी तरह तस्लीम नहीं किया है और आज विधानसभा के घेराव के अपने प्रोग्राम पर बजीद हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: झारखंड में एहतजाज का आज 17वां दिन है। तलबा और झारखंड सरकार के दरमियान बातचीत में मुबैना बदउनवानियों की तहकीकात, इम्तहानात की मनसूखी, कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई और इम्तहान के निजाम में इसलाह पर तवज्जो मरकूज की गई। हुकूमत ने 14वीं JPSC प्रीलिमिनरी इम्तहान मनसूख करने से इत्तेफाक किया है और तफसीली तहकीकात का हुक्म दिया है। CID के ADG मनोज कौशिक ने इस सिलसिले में एक शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी की है। उन्होंने कहा है कि अभी तक 19 मुलजमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है और डिजिटल शवाहिद भी काफ़ी तादाद में इकट्ठा किए जा चुके हैं। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: तलबा के जारी मुजाहरों के पेश नज़र झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC के 3 मुलाजमीन ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। JPSC के 3 मेंबरों अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनीमा हंसा ने कल गवर्नर संतोष कुमार गंगवार को अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। भारतीय बहरिया और अमेरिकी बहरिया की जानिब से धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने से मुतालिक मुश्तरका मश्क EOD 2026 आज से 14 अगस्त तक कोची में वाकई जुनूबी बहरी कमान में मुनाकिद की जाएगी। वजारती दिफा के मुताबिक इस बाहमी मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माहिर गोताखोर और धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने वाली टीमों के दरमियान बाहमी तआवुन और अमली हम आहंगी को मजीद मुस्तहकम करना है। 5 रोजा इस मशक के दौरान माहिरीन के दरमियान तजुर्बात और मालूमात का तबादला, मुश्तरका तरबियती सरगर्मियां, मुख्तलिफ आलात का अमली मुजाहरा और सूरत हाल पर मबनी अमली मशकें की जाएंगी। वजारती दिफा के मुताबिक भारतीय और अमरीकी बहरिया साल 2005 से ये मुश्तरका मशकें करती आ रही हैं। आइंदा होने वाली मशक इस सिलसिले की 8वीं कड़ी होगी। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आज दोपहर दिल्ली के कुछ इलाकों में मोतदिल बारिश की पेशगोई की है। उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल लगातार संगीन बनी हुई है क्योंकि बहुत से अजला सैलाब के पानी में डूबे हुए हैं, जबकि आने वाले दिनों में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल एक बड़ी तशवीश का मसला बनी हुई है। ताज के इलाकों में शदीद बारिश के बाद दरियाओं के पानी में फिर इजाफा हो रहा है। बालासोर में जालाकार दरिया में पानी के इजाफे से बस्ता में सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। केंद्रपाड़ा के बहुत से इलाके भी मुतासिर हुए हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी शदीद बारिश के सबब मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला अगले 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। रूस ने बहर हिंद के लिए एक रेलवे रास्ते का पता लगाने की तजवीज रखी है, जिससे भारत का अहम बहरी रास्तों पर इन्हिसार कम होगा। रूस के नायब वजीर आजम मारात खुसलिन ने बताया कि मुतबादिल रास्तों से आबनाए हुरमुज और आबनाए फास्फोरस समेत 2 क्लीदी आबी गुजरगाहों से जुड़े खतरनाक रास्तों से गुजरने के खतरे में मदद मिल सकती है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक जनाब खुसुनील ने बताया कि तुर्कवानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से गुजरने वाले रेल रास्तों का पता लगाया जा सकता है ताकि भारत को आसानी से रसाई फराहम की जा सके। ये तजवीज मगरबी एशिया में जारी जंग के पेश नजर सामने आई है, जिसमें आबनाए हुरमुज के रास्ते जहाजों के गुजरने में रुकावटें खड़ी कर दी हैं। मुजवजा रेल रास्तों से वसी जोग्राफियाई, सियासी और माशी मुजमरात पैदा हो सकते हैं क्योंकि ये वस्ती और जनूबी एशिया के जरिए बहरे हिंद के लिए रूस को एक मुतबादल बहरी रास्ता फराहम हो सकता है। भारत ने बोलीविया को जिंदगी बचाने वाली और लाजमी दवाएं रवाना की हैं। भारत ने ये 8 मैट्रिक टन दवाओं की खेप हिफ्जान सेहत के तई सलाहियत और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रवाना की हैं। वजारत खारजा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इजहार यकजहती और मुश्तरका तरक्की के जरिए दूसरे मुल्कों को तआवुन जारी रखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उज्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में भारत के वेट लिफ्टर महाराजन अरमु

0: पांडियन ने चांदी का तमगा जीता है। भारतीय वेट लिफ्टर ने स्नेच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने मजमुई तौर पर 285 किलोग्राम वजन उठाकर बेहतरीन जाति रिकॉर्ड बनाया। वियतनाम के हुआंग टेक ने कुल 291 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने भारत की जंग आज़ादी के तनाजुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि भारत छोड़ो तहरीक में शामिल लोगों की कुर्बानियों और उनका अज़्म आने वाली नस्लों को मुतासर करता रहेगा और हर भारतीय शहरी में आज़ादी के तई नई तवानाई पैदा करेगा। रोजनामा प्रताप ने अगस्त क्रांति के तनाजुर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत नायब सदर जमहूरियत सीपी राधाकृष्णन के इस बयान को सफाई अव्वल पर शाया किया है कि भारत एक है और हमेशा एक ही रहेगा। इसी अखबार की एक और खबर के मुताबिक वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मुसल्ला अफवाज ने बेमिसाल शुजात का मुजाहरा किया और भारत अपने शहरियों की सलामती और उनकी हिफाजत के लिए अहदबंद है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मुस्तफिदीन को 1 करोड़ से ज्यादा मकानात उनके सुपुर्द किए गए, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में शामिल हों और अपने घरों में तिरंगा लहराएं। भारत में गैर रिवायती ईंधन वाली बिजली पैदावार की सलाहियत 300 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। भारत और अमेरिका कोची में जुनूबी बहरी कमान में आज धमाका खेज हथियारों के बंदोबस्त की मशक शुरू करेंगे। रूस ने आबनाए हुरमुज जैसे दिफाई एतबार से अहम समुद्री रास्तों पर इन्हिसार को कम करने के लिए भारत तक रेल रास्ते की तजवीज रखी है। और महाराजा उरुमुख पांडियन ने ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: जी श्रोताओं, समाचार हमने सुने। आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पहलगाम, 100.1 मेगाहर्ट्ज न्यूज ऑन एआईआर की आराधना चैनल और हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के अलावा आप डीटीएच पर भी ये प्रसारण सुन रहे हैं। श्रावण मास के आखिरी सोमवार की हम बात कर रहे थे, जो उत्तर भारत की जो मान्यता है और रिवायत है उसके मुतालिक। और अगर हम बात करें तो श्रावण मास सिर्फ पूजा पाठ और व्रत तक महदूद नहीं, बल्कि इसका एक बड़ा संदेश प्रकृति से जुड़ने का भी है। श्रावण वर्षा ऋतु का महीना, श्रावण वर्षा ऋतु का महीना है। इस दौरान ज़मीन, पेड़ पौधे, नदियां और झीलें नई जिंदगी से भर जाती हैं। इसलिए श्रावण हमें प्रकृति के संरक्षण और जल की महत्वता को समझने का भी संदेश देता है। आज का दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि धार्मिक आस्था का असल मकसद सिर्फ रसूमात अदा करना नहीं, बल्कि अपने विचार, वाणी और कर्म को बेहतर बनाना भी है। व्रत और पूजा के साथ अगर इंसान सेवा, दान, सच्चाई, संयम और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव पैदा करे तो यही आस्था के हकीकी रूप को जाहिर करता है। और श्रावण मास की इस आखिरी सोमवार के बाद कल मासिक शिवरात्रि का महत्वपूर्ण दिन आएगा, जिसमें भक्त भगवान शिव की विशेष पूजा और आराधना करते हैं। इस तरह श्रावण के आखिरी दिन भी शिव भक्ति की ये पवित्र परंपरा जारी रहती है। और आखिर में आज के इस पवित्र दिन का संदेश यही है कि हम अपने जीवन से जो दुष्ट विचार हैं, मनफी विचार हैं, उनको दूर करें, दूसरों की मदद करें, प्रकृति का सम्मान करें और अपने मन में प्रेम, करुणा और शांति को जगा दें। तो ये थी चंद बातें श्रावण मास की आखिरी सोमवार के हवाले से, जो उत्तर भारत में मान्यता है उस हवाले से हमने बात की। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये मान्यताएं जो हमने आपके साथ डिस्कस की, आपके समक्ष रखी। ये

0: उत्तर भारत की जो पूर्व परंपरा है, वहाँ की मान्यता है, उसके मुताबिक थी। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण जारी है। और अब हम रुख करते हैं अपने एक और संवाददाता की तरफ। जी हाँ, बानिहाल के हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन हमारे साथ, उनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, जैसे ही हमारा उनसे राबिता होता है, संपर्क होता है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 39वां दिन है और आज तक जो यात्रा रही काफ़ी पॉजिटिव इसमें मैसेज हमें मिला, काफ़ी पॉजिटिव अप्रोचेज मिले। सभी यात्री जो यात्रा करके यहाँ से चले गए, उन्होंने कश्मीर के जो मेहमान नवाजी हैं उसकी तारीफ़ें की, प्रशासन ने जो इंतज़ाम किए थे उनकी तारीफ़ें की, और जो कुछ भी उन्होंने देखा और जो कुछ भी उनके साथ हुआ उन्होंने उसकी तारीफ़ें की। उन्होंने जो यहाँ के व्यापारी हैं उनकी तारीफ़ें की, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनकी तारीफ़ें की। और हमारी भी यही कोशिश रहती है, यहाँ के लोकल लोगों की भी यही कोशिश रहती है कि जो भी मेहमान यहाँ पर आएँ, जो भी यात्री यहाँ पर आएँ, उनके सुख सुविधा में किसी किस्म की कोई कमी ना रह पाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको आराम देने की कोशिश करें और उनकी सुविधाओं में किसी किस्म की कमी ना हो। विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा का जारी है और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे बानिहाल के संवाददाता मोहम्मद तस्कीन। तस्कीन साहब, आपका खैर मकदम है इस विशेष प्रसारण में।
1: जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
0: आज यात्रा का 39वां दिन है और श्री अमरनाथ जी यात्रा आज लगातार दूसरे दिन भी सस्पेंड है, जैसा हमारे पास रिपोर्ट्स कल से आ रही हैं। तो हाँ, कैसा मौसम है अभी जम्मू में और बारिशों का जो सिलसिला है, या बारिश के हवाले से जो अपडेट आपके पास है वो क्या है, और जो नेशनल हाईवे का आप हमसे जिक्र करते हैं उसके हवाले से भी हमारे श्रोताओं को अवगत कराएं।
1: जी शुक्रिया। जो ऑफिशियली तौर कहेंगे तो आज तीसरा दिन है, ये अनऑफिशियली कहेंगे तो तीसरा दिन है यात्रा के बंद रहने का। और अगर ऑफिशियली जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने ऑर्डर किया तो उसके हिसाब से आज दूसरा दिन है, जब 9 तारीख को कल से यात्रा को मुअत्तल किया गया है, ट्रैक की मरम्मत वगैरह को लेकर, मौसमी खराबी को लेकर।
0: जी
1: इस दौरान जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है इस पर ट्रैफिक जारी है, मामूल का ट्रैफिक जारी है। और कल शाम से मौसम जो है तकरीबन ठीक हो गया है, आसमान जो है खुल गया है, बादल जो है मतलब तकरीबन खत्म हो गए। आज भी हल्के हल्के बादल हैं, लेकिन जो महकमा मौसमियात की कल की एक पेशन गोई आई है उसमें जो पीछे कहा गया था कि जिसमें ये मतलब पेशन गोई की गई थी, ये फोरकास्ट किया गया था कि हैवी से दरमियाना दर्जे से मतलब हैवी रेनफॉल्स होगा यहाँ ये जो जम्मू डिवीजन के इलाकों में, इसमें खासकर जम्मू, उधमपुर, रियासी और चिनाब एरिया के कुछ इलाकों में कहा गया था कि शदीद से दरमियाना दर्जे की बारिशें होंगी। लेकिन
0: जी
1: कल जो डायरेक्टर सोनम लोट से उन्होंने उन्हें ऑल इंडिया रेडियो को ही बताया कि जो मौसमी इसमें तब्दीली आई है थोड़ी सी, और जो बारिशों का जोर है वो थोड़ा कम हो गया है, और उन्होंने जो हैवी टू जो मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल्स का फोरकास्ट किया गया था उसमें कहा कि नहीं जी ये थोड़ा कम होगा, अगर होगा भी तो आइंदा 15 अगस्त तक जो बारिशों का सिलसिला है वो हल्का हल्का होगा, अगर होगा जिन इलाकों में ज्यादा बारिशों का उन्होंने मतलब जो इम्कानात थे उन्हें मुस्तरद किया है, और कहा कि जो सिस्टम है उसमें तब्दीली आई है और ज्यादा बारिशों के मतलब चांसेस नहीं है 15 अगस्त तक। ये सोनम लोट्स का कहना था कल जो उन्होंने जो स्टेटमेंट रात को दे दिया। इस दौरान जो हाईवे है ये चल रहा है, ट्रैफिक अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रहा है, और कल जैसा कि आपका मालूम है कल आखिरी जो जब यात्रा को परसों से मौसमी खराबी के बायस बंद कर दिया गया था 8 तारीख को, तो उसके बाद 9 तारीख को बाजाबता ऑफिशियली इसमें हुक्मनामा सादर हुआ कि फिलहाल यात्रा मुअत्तल है। तो इस दौरान जो कल लास्ट जो हमारा पहलगाम से वापस जो जत्था आया था 53 गाड़ियों का, तो वही एक ही

0: लास्ट जो मतलब लास्ट जो वापस जो इस अब तक की यात्रा का कहेंगे तो वो आखिरी जत्था था कल, जिसे जम्मू की तरफ रवाना किया गया था। तो
1: जी
0: आज जो सुबह से एक्टिविटी है हाईवे पर वो आम गाड़ियों के लिए रही, जो मामूल का ट्रैफिक है उसे चलाया गया। और इस वक्त अगर कहेंगे तो दोनों तरफ से सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जम्मू से श्रीनगर की तरफ और श्रीनगर से जम्मू की तरफ बढ़ रही है, जबकि ट्रकों को अल्टरनेट डे पर एक एक तरफ से छोड़ दिया जा रहा है। और अगर कहेंगे तो कल दोनों तरफ से कल सुबह जो है कल दिन में दोनों तरफ से ट्रैफिक चलाया गया, जो कश्मीर काजीगुंड से बहाल किया जाता है। उसके
1: जी
0: अलावा जम्मू से भी जो फ्यूल टैंकर से बाकी जो गैस वगैरह लेकर कश्मीर गाड़ियां आती हैं उनको चलाया गया। जैसे वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने चंद दिन पहले, हमने ये अपने प्रोग्राम में भी बात की थी कि उन्होंने कहा था कि जो प्रायोरिटी रहेगी, एक तो टूरिस्ट ये जो फ्रूट सीजन की वजह से जो कश्मीर से सेब वगैरह को बाहर ले जा भेजने का है, तो उसमें उन्होंने कहा था इस पर प्रायोरिटी रहेगी। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था कि जो कश्मीर के लिए जो जो सामान आता है खासकर जिसमें पेट्रोकेमिकल्स है, ईंधन की गाड़ियां, फ्यूल टैंकर्स वगैरह है, गैस है, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा था ये चीजें प्रायोरिटी पर रहेंगी और चलती
1: जी
0: रहेंगी। तो वैसा ही सिलसिला आज भी हाईवे पर जारी है, यानी ट्रैफिक जारी है, बगैर किसी खलल के जारी है।
1: जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनकर खुशी हुई कि मौसम फ़िलहाल जम्मू में ठीक हुआ है, और हम आगे उम्मीद यही करेंगे कि जो यात्री अभी आना चाहते हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो फिर से शुरू हो और हम उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट के लिए। ये थे हमारे बानिहाल के संवाददाता मोहम्मद तस्कीन, जो हाईवे के हवाले से हमें अपडेट दे रहे थे। मौसम के हवाले से इन्होंने बात की कि कल शाम से जम्मू में जो मौसम है वो भी धीरे धीरे अब सही हो रहा है। आज मौसम बड़ा सुहाना है और कश्मीर में भी इस वक्त मौसम काफ़ी सुहाना बना हुआ है। हल्की हल्की धूप पड़ रही है सुबह सवेरे, और बारिशों का जो सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी था उसमें एक विराम आया है, और हम आगे उम्मीद यही रखेंगे कि मौसम के मिजाज में तब्दीली आए और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं, टूरिस्ट यहाँ पर आने वाले हैं, वो आएं और यहाँ की सुंदरता का लुत्फ़ लें और बाबा बर्फानी के दर्शन भी करें।

जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz।

0: कुछ नहीं हो जानी यार की आराधना चैनल डीटीएच और हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण के इस पवित्र महीने में हिंदू धर्म में बहुत सारी और भी जो त्यौहार हैं वो मनाए जाते हैं, और इन्हीं त्यौहारों में वाराणसी व्रत एक बहुत ही माना हुआ, बहुत ही पवित्र व्रत माना जाता है। हिंदू धर्म में वाराणसी व्रत की अगर हम बात करें तो इसकी एक बहुत ही बड़ी महत्वता है। हिंदू धर्म में वाराणसी व्रत एक निहायत पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह व्रत खास तौर पर सुहागन औरतें अपने परिवार की सुख समृद्धि, अच्छी सेहत, खुशहाली और लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। यह त्यौहार खास तौर पर जनूबी भारत की रियासतों जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। वाराणसी व्रत आमतौर पर श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की शुक्रवार को रखा जाता है, यानी श्रावण पूर्णिमा से पहले आने वाले जुमा के दिन। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से परिवार में धन धान, सुख समृद्धि और सौभाग्य उतर आता है। वाराणसी का मतलब क्या है? लफ्ज वाराणसी दो लफ्जों से मिलकर बना है, वारा यानी वरदान देने वाली और लक्ष्मी यानी धन और समृद्धि की देवी। इसलिए वाराणसी को ऐसी देवी के रूप में पूजा जाता है जो अपने भगवान और जो अपने भक्तों को वरदान, सुख और समृद्धि अता करती है, साथ में ही दौलत भी अता करती है। हिंदू मान्यता के मुताबिक माता लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं बल्कि आरोग्य, धन धान, साहस, विजय, विद्या और संतान जैसी जीवन की अहम खुशियों और समृद्धि की भी प्रतीक है। इस व्रत से मुतालिक और भी बात होगी और क्या कुछ होता है इसमें, उस पर भी आगे बात होगी। हमारा ये विशेष प्रसारण जारी है, हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए ये विशेष प्रसारण।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: श्रोताओं, सुबह के 9:25 हो रहे हैं। अब आइए हमारे केंद्र से सुनते हैं उर्दू खबरों का बुलेटिन, उसके बाद हम फिर बात करेंगे।
1: सुमति रिजुयताम देवानाम रातिरभि

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आबिदा अख्तर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर दौलत मुश्तरका 2026 खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर खिलाड़ियों ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ इन खेलों के दौरान हासिल किए गए तजुर्बात शेयर किए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने अपनी बेमिसाल कारकर्दगी से मुल्क का सर फख्र से ऊंचा किया है और उनकी कामयाबी नौजवानों को तरगीब देती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस दौरान एक वीडियो पैगाम शेयर किया और कहा कि जो खेलेंगे वो आगे बढ़े।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: मुल्क भर में शहरियों में हुबल वतनी के जज्बे को तकवीत बख्शने, कौमी यकजहती को फरोग देने, नीज भारत के गुनागुन सकाफती विरसे को उजागर करने की गर्ज से कल से हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज हुआ। मुल्क भर में हर घर तिरंगा पहल साल 2022 में शुरू हुई और अब ये मुल्क की एक बड़ी अवामी तहरीक उभरकर सामने आई है। इस साल ये मुहिम इस एतबार से भी अहमियत की हामिल है क्योंकि इसी बरस भारत के कौमी तराने वंदे मातरम के 150 बरस मुकम्मल हो रहे हैं।

इधर जम्मू कश्मीर में भी हर घर तिरंगा मुहिम के तहत खसूसी प्रोग्रामों और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। 17 अगस्त तक जारी रहने वाली ये मुहिम यूटी के सभी 20 अजला में शदोमद से अमलाई जा रही है। इस पहल के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में कौमी परचम जोश व जज्बे के साथ लहराया जाता है और जिद्दोजहद आज़ादी के शहीदों को खराज अकीदत अदा किया जाता है। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत स्कूलों में क्विज मुकाबलों और बहस व मुबाइसों का इनेकाद किया जा रहा है। हुकूमत ने जम्मू सूबे के डोडा जिले के बदरवा कस्बे में वाक़ रतनगढ़ किले की शान रफ्तार बहाल करने और इसकी तजदीद कार्य के लिए 10 करोड़ रुपए मालियत के मंसूबे को मंजूरी दी है। वज़ीर आला के दफ्तर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में हुकूमत के इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि इस

0: तैयार करने का अमल शुरू किया गया है, जबकि जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के दरमियान इजाफी 78 किलोमीटर मसाफत वाली लाइन के लिए सर्वे करने को मंजूरी दी गई है। जालंधर कैंट और जम्मू तवी के दरमियान 216 किलोमीटर की रेलवे लाइन के लिए भी डीपीआर तैयार किया गया है और इसके अलावा सांबा जिले में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी चालू किया गया है, जबकि कठुआ अनंतनाग और जम्मू में भी इस किस्म के टर्मिनल बनाने को मंजूरी दी जा चुकी है। हमारे गांदरबल के नुमाइंदे और रोजनामा मकसद के चीफ एडिटर साबिर अयूब के चचा जाद भाई जहूर अहमद बट कल शाम इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर कई सहाफती और समाजी शख्सियात और तंजीमों ने दुख का इजहार किया है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के सरबरा अशफाक अहमद शाह और दीगर अमले ने भी मरहूम के इंतकाल पर रंज व अलम का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे के साथ हमदर्दी और ताजियत की है। लवाहिकीन के मुताबिक मरहूम की रस्म चाहरुम 12 अगस्त बरोज बुधवार उनके आबाई गांव तुलमुला में अंजाम दी जाएगी। अवामी मसाइल पर मबनी हफ्तावार प्रोग्राम शहर शहर मंजर के लिए फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग आज और कल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक हो रही है। ख्वाहिशमंद अफराद अपने मसाइल रिकॉर्ड करवाने के लिए फोन नंबर 01942452019 पर कॉल कर सकते हैं। आकाशवाणी के रीजनल न्यूज यूनिट श्रीनगर को कैजुअल बुनियादों पर बल्ती न्यूज रीडर्स कम ट्रांसलेटर्स का एक पैनल तश्कील देना मतलूब है। उम्मीदवार की तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उम्मीदवार के लिए अंग्रेजी और उर्दू मतन को नशरियाती मैयार के मुताबिक बल्ती में तर्जुमा करने की सलाहियत होना लाजमी है। उम्मीदवार की उम्र 21 से 50 साल के दरमियान मुकर्रर की गई है। आखिर में दर्जे हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.4 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आकाशवाणी श्रीनगर के FM बालतल, FM पहलगाम, न्यूज ऑन एयर की आराधना चैनल, DTH और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।

पृषदश्वामरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा का आप सुन रहे हैं और हम बात कर रहे थे वारालक्ष्मी व्रत के मुतालिक। आइए आपको पूजा की तैयारी की से कैसे की जाती है इस व्रत की उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। वारालक्ष्मी व्रत के दिन घर की खास सफाई की जाती है, घर के दरवाजे पर रंगोली या कोलम बनाया जाता है और पूजा का स्थान फूलों से सजाया जाता है। कई घरों में एक कलश सजाया जाता है, इस कलश को साफ पानी से भर दिया जाता है, इस पर आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है और इसे माता लक्ष्मी की प्रतीक मूर्ति के रूप में सजाया जाता है। इसे जेवरात यानी जो वस्त्र होते हैं, जेवरात फूलों हल्दी और कुमकुम से सजाया जाता है। इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, दीप जलाया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं और उसके बाद इस पर भोग अर्पित किया जाता है। सुहागन औरतों के लिए इसका एक ख़ास महत्व है। वारालक्ष्मी व्रत को ख़ास तौर पर शादीशुदा औरतों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कई औरतें इस दिन व्रत रखती हैं और अपने धर्मपति और परिवार की सुख शांति, आरोग्य और समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करती हैं। कई स्थानों पर औरतें एक दूसरे को मंगलसूत्र, चूड़ियां या रक्षा सूत्र जैसे शुभ चीज़ें भी देती हैं। इस व्रत से मुतालिक हम और भी आगे बात करेंगे। फ़िलहाल ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए और हमारे साथ बने रहिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं और हम इसमें बात कर रहे थे जो वारलक्ष्मी व्रत होता है उसके हवाले से। वारलक्ष्मी व्रत के साथ एक मशहूर पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी ने चारुमती नाम की एक औरत के सपने में आकर उसे वारलक्ष्मी व्रत करने की प्रेरणा दी है। चारुमती ने माता की आज्ञा के मुताबिक व्रत की रखा और पूजा की। इसके बाद मान्यता के मुताबिक इसके परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आई। तब से औरतें मानती हैं कि माता लक्ष्मी का व्रत रखकर अपने परिवार की भलाई और समृद्धि की कामना की जाए तो ज़रूर पूरी हो जाती है। आज के दौर में वारलक्ष्मी व्रत का संदेश क्या है? वारलक्ष्मी व्रत का महत्व सिर्फ धन और दौलत हासिल करने तक महदूद नहीं है। इस त्यौहार का एक बड़ा संदेश परिवार में प्रेम, एकता, सेवा और सम्मान को मजबूत बनाना भी है। जी हाँ श्रोताओं, इन्हीं चीज़ों से तो एक परिवार मजबूत बनता है, इन्हीं चीज़ों से तो एक परिवार लंबे समय तक एक साथ टिकता है। जब परिवार में प्रेम हो, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, एकता हो, जब सब लोग मिलजुल कर एक परिवार की कामयाबी के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो वो परिवार ज़रूर कामयाब होता है, आगे बढ़ता है। सेवा और सम्मान का तो पता ही है कि जब तक हम एक दूसरे की सेवा नहीं करेंगे, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो एक खुशहाल परिवार का हम स्वप्न नहीं देख सकते। आज के दौर में जब परिवार के जो लोग होते हैं अपनी अपनी मसरूफियात में, अपने अपने कामों में उलझे रहते हैं तो ऐसे त्यौहार लोगों को एक साथ आने, परंपरा को समझने और अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका देते हैं। ये त्यौहार हमें ये भी याद दिलाता है कि असल समृद्धि सिर्फ पैसा और दौलत नहीं बल्कि अच्छी सेहत, शांति, परिवार का प्रेम, आपसी विश्वास और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में भी है। यूँ वार्षिक व्रत आस्था, सौभाग्य, समृद्धि और परिवार की खुशहाली से जुड़ा एक खूबसूरत त्यौहार है जो ख़ासतौर पर जनूबी भारत की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में एक अलग पहचान रखता है। हमारी दुआ है कि माता लक्ष्मी सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि लाएं। यही इस पवित्र व्रत का संदेश है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 39वां दिन है और यात्रा फिलहाल पिछले 2 दिनों से अस्थायी रूप से स्थगित है।

है, क्योंकि जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें कई जगहों पर काम चल रहा है और वाहनों के चलने में कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं। और इस ट्रांसमिशन में हम बात कर रहे थे जो श्रावण मास में कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं हिंदू धर्म के, उनकी हमने इससे पहले वरालक्ष्मी व्रत के बारे में बात की, और अब हम आपको एक और त्यौहार यानी उपाक्रमा के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। उपाक्रमा वैदिक ज्ञान आचरण और आध्यात्मिक परंपरा का पवित्र पर्व है। भारतीय संस्कृति में ऐसी बहुत सी धार्मिक पर्व और संस्कार हैं जिनका मकसद सिर्फ पूजा पाठ तक महदूद नहीं बल्कि ज्ञान अध्ययन आचरण और आध्यात्मिक विकास से भी जुड़ा हुआ है। इन्हीं अहम परंपराओं और पर्वों में एक नाम उपाक्रमा का है। उपाक्रमा एक कदीम वैदिक परंपरा है जिसमें वेदों के अध्ययन, शास्त्रों के ज्ञान और आध्यात्मिक साधना से जुड़ी विशेष रसूमात अदा की जाती हैं। ये परंपरा ख़ास तौर पर उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जो वैदिक अध्ययन और धार्मिक शास्त्रों से जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि उपाक्रमा का मतलब क्या है। संस्कृत लफ्ज़ उपाक्रमा का मतलब है किसी काम का आगाज़ या दोबारा शुभ आरंभ करना। वैदिक परंपरा में इसका ताल्लुक ख़ास तौर पर वेद के अध्ययन को दोबारा शुरू करने से है। पुराने ज़माने में गुरुकुल परंपरा के तहत तलबा या स्टूडेंट्स गुरु के पास रहकर वेदों और दूसरे शास्त्रों का अध्ययन करते थे, उसकी तालीम लेते थे, और साल के कुछ मखसूस समय में अध्ययन को रोका जाता था और बाद में एक विशेष धार्मिक रस्म के जरिए वेद अध्ययन का दोबारा आरंभ किया जाना एक परंपरा थी। इसे उपाक्रमा इस परंपरा को उपाक्रमा कहा जाता था, यानी कि जब वो अपनी स्टडीज़ को फिर से स्टार्ट करते थे तो उस परंपरा को उपाक्रमा कहा जाता है। उपाक्रमा कब मनाया जाता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, और इसके रिलेटेड जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसका रक्षाबंधन से भी एक गहरा ताल्लुक है। जो कुछ भी है हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले महजूज होते हैं भक्ति संगीत से।

जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपडेट्स, हम आप तक पहुंचा रहे हैं इन्फॉर्मेशन और जो भी हमारे पास ताज़ा तरीन जानकारियाँ हैं हम कोशिश करते हैं कि आपको उनसे अवगत कराएं। और हम हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले एक और पर्व उपाक्रमा के बारे में बात कर रहे थे। उपाक्रमा का मतलब हमने आपको बताया, इसका मतलब ये है कि जब गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे कुछ समय के लिए विश्राम देते थे अपनी पढ़ाई को, उसके बाद जब वो फिर से अपनी पढ़ाई को शुरू करते थे तो उस क्रिया को, उस प्रक्रिया को उपाक्रमा कहा जाता है। तो हमने आपसे कहा था कि हम अगले भाग में बात करेंगे उपाक्रमा का कब मनाई जाती है। उपाक्रमा आमतौर पर श्रावण मास की पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, लेकिन इसकी तारीख और रसूमात मुख्तलिफ वैदिक शाखाओं और इलाकों के मुताबिक अलग हो सकते हैं। जनूबी भारत में ख़ासतौर पर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसके मुख्तलिफ परंपराएं मौजूद हैं। कई ब्राह्मण समाज इस दिन विशेष पूजा पाठ करते हैं और यज्ञोपोत यानी जुनू को तब्दील करने की परंपरा भी अदा करते हैं। माफ़ कीजिएगा अगर इन चीज़ों को पढ़ने में हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। इस वजह से उपाक्रमा को कई जगह जुनू पोनम या उपाक्रमा संस्कार से भी जोड़ा जाता है। यज्ञोपवीत की परंपरा उपाक्रमा के एक अहम हिस्सों में मानी जाती है। ये इसका धारण करना या नया यज्ञोपवीत धारण करना यज्ञोपवीत एक पवित्र सूत्र है जिसे वैदिक परंपरा में धार्मिक जिम्मेदारी, अध्ययन और संयम की याद के तौर पर धारण किया जाता है। इस मौके पर मंत्र उच्चारण के साथ पुराना सूत्र तब्दील किया जाता है और नया सूत्र धारण किया जाता है। इसके जरिए इंसान अपने कर्तव्य, साधना और आचरण को दोबारा मजबूत बनाने का संकल्प लेता है। रक्षाबंधन के साथ भी इसका एक गहरा ताल्लुक है। श्रावण पूर्णिमा के दिन उपाक्रमा और रक्षाबंधन कई इलाकों में एक ही दिन पढ़ सकते हैं। अगरचे दोनों में परंपरागत और परंपराएं अलग हैं, लेकिन दोनों में एक मुश्तरका भाव रक्षा, जिम्मेदारी और शुभ संकल्प का है। रक्षाबंधन में एक बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, जबकि उपाक्रमा में वैदिक परंपराओं से जुड़े लोग अपने आध्यात्मिक और धार्मिक कर्तव्यों को याद करते हुए सूत्र तब्दील करते हैं। इस परंपरा के बारे में, इस त्यौहार के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल आप भक्ति संगीत सुनते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।

जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतर 103.7 में घर्ट्स, FM पहलगाम 100.1 में घर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH तथा हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। हम उपाक्रमा त्यौहार के बारे में बात कर रहे थे और उपाक्रमा त्यौहार का जो आध्यात्मिक संदेश है वो ये है कि ज्ञान हासिल करना सिर्फ पढ़ने तक महदूद नहीं होता, बल्कि इसे आचरण में भी लाना चाहिए, यानी कि इसे अपने आम जिंदगी में भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। वैदिक परंपरा में ज्ञान और कर्म को एक दूसरे से अलग नहीं समझा जाता, इसलिए उपाक्रमा के ज़रिए इंसान अपने जीवन में सच्चाई, संयम, सेवा, अनुशासन और नेक विचार को जगह देने का संकल्प लेता है। और यही हर एक मज़हब, यही हर एक तालीम, जो भी हम किताब पढ़ते हैं उससे हमें यही सीखने को मिलता है। ये परंपरा हमें ये भी याद दिलाती है कि अध्ययन एक मुसलसल प्रक्रिया है। जी हाँ, हमें भी अपने आम जीवन में लगातार अध्ययन करना चाहिए, नई नई किताबें पढ़नी चाहिए, जो भी हमें मिलता है हमें उसको पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में उन बातों को मिला लेना चाहिए। इंसान को उम्र के हर पड़ाव पर कुछ नया सीखने और अपने ज्ञान को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग भी हमसे कहते हैं कि इंसान जब तक मरता नहीं वो सीखने का जो अमल है वो रुकता नहीं। आज के दौर में उपाक्रमा की महत्वता क्या है, आज जब दुनिया तेज़ी से बदल रही है और

नई पीढ़ी जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। उपाक्रमा जैसी परंपराएं हमें अपनी संस्कृति, वैदिक विरसे और ज्ञान की परंपरा से जोड़े रखने में अहम भूमिका निभा सकती है। इस सब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि ज्ञान, अनुशासन और अच्छा आचरण इंसान की हकीकी संपत्ति है। चाहे ज़माना कितना ही बदल जाए, सीखने की ख्वाहिश, अपने ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए उपाक्रमा को सिर्फ एक धार्मिक रस्म के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान के पुण्य आरंभ, आध्यात्मिक साधना और सांस्कृतिक विरसे को आगे बढ़ाने की परंपरा के रूप में भी समझा जा सकता है। उपाक्रमा का यही संदेश है कि ज्ञान हासिल करें, इसे जीवन में उतारें और आने वाली पीढ़ी तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें।

श्रोताओं, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। दिन के 12 बज रहे हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली केंद्र चलते हैं, जहां से आप समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन के 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी एनके प्रेमचंद्रन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और इस पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दिन के 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध जारी है। विद्यार्थियों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने फैसले पर कायम हैं। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि एशियाई शेर के संरक्षण में भारत की सफलता वन्य जीव और जैव विविधता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का गौरवशाली प्रमाण है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के भारोत्तोलक महाराजन अरुमुंग पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल पर आप ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का। डीटीएच और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं और आज यात्रा 2026 का 39वां दिन है। यात्रा के हवाले से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यात्रा फिलहाल पिछले दो दिनों से मौसम में खराबी के कारण और सड़क की जो हालत है उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन ने यात्रा को फिलहाल अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है, जिसकी वजह से अभी यात्रा बिल्कुल भी नहीं हो रही है। जो भी यात्री यहाँ मुख्तलिफ ट्रांज़िट कैंप्स में हैं उन्होंने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए। करीबन 5 लाख के करीब इस साल श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए। और मौसम फ़िलहाल जम्मू का हमारे पास जो खबर आई है, जम्मू में मौसम अभी साफ हो रहा है और जो सड़क पर काम है वो भी जारी है, और जैसे ही इसमें कोई अपडेट आता है हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल ये विशेष प्रसारण आप सुनते रहिए और भक्ति संगीत एंजॉय करते रहिए।

श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुनते रहिए और अब से लेकर शाम के 6 बजे तक सायका आपके साथ रहेंगी। ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और भक्ति संगीत भी सुनते रहिए। ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हमें ट्यून करिए और हम कामना करते हैं कि आपकी यात्रा सुगम हो, शांतिपूर्ण हो और आपको किसी किस्म का कोई कष्ट ना हो।

श्रोताओं, आकाशवाणी श्रीनगर के विशेष श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस प्रसारण से आप जुड़े हुए हैं। ये विशेष प्रसारण आप FM बालथल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR, DTS की आराधना सर्विस, प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी जो है हम आपके संग जुड़े हुए हैं।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में, और आपको मौसम विभाग से मिली जानकारी जो है आपके साथ साझा करेंगे वो ये कि मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज और कल यानी 10 और 11 अगस्त ज़्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा गरज के साथ हो सकती है, जबकि कुछ ज़िलों में भारी वर्षा या कुछ समय के लिए तेज़ वर्षा होने की संभावना बताई जा रही है। और अब 12 से 15 अगस्त की बात करें तो उसमें कई जगहों पर हल्की वर्षा गरज के साथ वर्षा और कुछ जगहों पर कुछ समय के लिए तेज़ वर्षा होने की संभावना भी बताई जा रही है। और यहाँ पर यह आपको बताना चाहेंगे कि 10 और 11 अगस्त के दौरान कुछ जम्मू कश्मीर के कुछ ज़िलों में भारी वर्षा या कुछ समय के लिए तेज़ वर्षा होने की संभावना जो है बताई जा रही है, और साथ ही साथ मूसलाधार वर्षा या कुछ समय के लिए तेज़ वर्षा से जो है हम ये कहेंगे कि ये बताया जा रहा है कि मूसलाधार वर्षा या कुछ समय के लिए तेज़ वर्षा के संवेदनशील इलाकों में अचानक जो है फ्लड्स या भूस्खलन भी जो है हो सकते हैं। तो हम ये जो है ये मौसम केंद्र मौसम विभाग श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार जो है ये जानकारी हमने आपके साथ साझा कर दी।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2024 के विशेष प्रसारण में, और अब से बस कुछ ही क्षणों में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। समाचार के लिए करें बस जरा सी प्रतीक्षा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता में एक रूपता तथा प्रशासन और कामकाज में कुशलता बढ़ाने, स्वतंत्रता पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है।

0: उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे, लेकिन सदन में लगातार नारेबाजी के कारण कार्यवाही पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च किया। सरकार का दावा है कि विद्यार्थियों की 98% मांगे स्वीकार कर ली गई हैं। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुरानी विधानसभा के पास पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी और नई विधानसभा की ओर बढ़ते रहे। रांची में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 विद्यार्थी अब भी अनिश्चितकालीन अनशन में है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी में वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशिष्ट प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ नारे लगाए और नागरिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 112 अंक बढ़कर 78,611 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैव बीन adjourned टिल 2 PM when the lower house reassembled after the first adjournment at 12 noon. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal introduced the Tribunals Reforms Bill 2026 amid the opposition uproar. Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy introduced the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026. Minister of State for Home Nityanand Rai introduced the Kerala Alteration of Name Bill 2026. Minister of State for Cooperation

0: समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।
2: जय जय बाबा बर्फानी।
3: श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण के साथ और हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म द्वारा भी हम आपके साथ बने हुए हैं और आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत करते हैं।

श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी गुफा जम्मू कश्मीर में 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमालय का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो श्रीनगर से लगभग 145 किलोमीटर दूर है। यहाँ बर्फ से बनी एक प्राकृतिक संरचना है जिसे शिवलिंगम कहा जाता है। ये टपकते हुए पानी के परत दर परत जमने से बनती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही पवित्र स्थान, हम ये कहेंगे कि पवित्र स्थान है जहाँ भगवान शिव जी ने देवी पार्वती को अमृता का रहस्य यानी कि अमर कथा सुनाई थी।

श्रोताओं बने हुए आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। श्रोताओं आपको बता दें कि तीर्थ यात्री बाबा बर्फानी के भक्त बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ इस यात्रा पर आते हैं और ये पवित्र यात्रा जो है करते हैं। और जो हम ये कहेंगे कि ये बड़ी आस्था के साथ जो आते हैं और फिर ये यात्रा करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। एक गुफा मंदिर की ये असाधारण सी यात्रा जो हिमालय के उस तपस्वी का घर है जो विनाशक और उपचारक दोनों है और हिंदू देवताओं में सबसे महान भी।

श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में, और हम बात कर रहे हैं श्री अमरनाथ जी गुफा के बारे में। आपको बता दें श्रोताओं कि अनंतनाग ज़िला अमरनाथ पर्वत पर स्थित है।

हम ये कहेंगे कि पूरे भारत से श्रद्धालु जो है आते हैं, और यही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते रहते हैं। और ये अनंतनाग ज़िले के ऊपरी इलाकों में समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण ये गुफा साल के ज़्यादातर समय बर्फ़ से ढकी रहती है, और गर्मियों में कुछ समय के लिए ही इसके प्रवेश द्वार तक पहुंचा जा सकता है। ये गुफा बर्फ़ की बनी है और इसमें बर्फ़ के कुछ हम ये कह सकते हैं कि बर्फ़ के खंभे जैसी आकृतियाँ मौजूद हैं।

है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 साल में बब्बर शेरों को महफूज रखने का सफर कामयाबी के साथ तय किया है और इनकी तादाद 891 हो गई है। अब खबरें तफसील से। कई मामलात पर अपोजिशन अरकान की हंगामा आरई के तनाजुर में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। इनमें नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई का मामला भी शामिल है। ट्राइब्यूनल की इस्लाहात

0: शामिल हों और विकसित भारत की तामीर की समत अपना रोल अदा करने की खातिर अपने इज्तिमाई अज्म की तजदीद करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि हमारा तिरंगा हमारी शान है और और मुल्क के लिए हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए तरगीब का एक मुस्तकिल वसीला है। वजीर आजम ने कहा कि उन्हें इस बात पर खुशी है कि इस साल कोशिशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं और वो भी एक ऐसे वक्त के जब हम कौमी गीत के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। चीन के हुकाम ने शदीद तूफान डॉल्फिन के आने के तनाजुर में शंघाई समेत मशरकी चीन से 10 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। खित्ते में शदीद तूफान के नतीजे में मूसलाधार बारिश हुई और ट्रांसपोर्ट निजाम में खलल पड़ गया। आज शंघाई में तकरीबन 1000 परवाजें मनसूख की गईं। चीन के हुकाम ने इससे पहले डॉल्फिन तूफान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया था, जो इस साल वहां आने वाला सबसे शदीद तूफान है। बब्बर शेरों के आलमी दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में एशियाटिक लाइन के मस्कन और इसकी रेंज में उसत के साथ साथ इसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव का तहरीर करदा मजमून शेयर करते हुए जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि लोगों को की मजबूत शमूलियत के साथ बब्बर शेरों को महफूज रखने के सरकार का पुख्ता अज मुल्क के जंगली जानवरों का तहफ़ करने की एक बाइस से तरगीब मिसाल है। माहौलिया जंगलात और आब हवा की तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव के तहरीर करदा मजमून में कहा गया है कि 11 जिलों में 2020 में तकरीबन 30,000 मुरबा किलोमीटर के इलाके से बढ़कर बब्बर शेरों का मस्कन अब तकरीबन 35,000 मुरबा किलोमीटर तक फैल गया है। वजीर आजम ने मोदी ने कल नई दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर दौलत मुश्तरका खेलों में तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान खिलाड़ियों ने वजीर आजम के साथ खेलों से मुतालिक अपने तजर्बात शेयर किए। वजीर आजम मोदी ने कहा कि वकार सिर्फ फीता काटने से हासिल नहीं होता, बल्कि एक नौजवान तालिब इल्म या उभरते हुए खिलाड़ियों के जज्बे के साथ खेलने से हासिल होता है।
1: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं भाई खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है।
0: आखिर में खास खास खबरें। एक बार फिर कई मामलों पर अपोजिशन अरकान के शोरगुल के तनाजुर में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में आज भी रुकावट पड़ी। लोकसभा में ट्राइब्यूनल्स इस्लाहात बिल 2026 समेत 4 बिल पेश किए गए। मजकूरा बिल का मकसद ट्राइब्यूनल्स के कामकाज में शफाफियत और सलाहियत में बेहतरी लाना है। झारखंड में भर्ती इम्तहान में मुबैना बेजाबतियों के मामले पर एहतजाज करने वाले तलबा ने रियासती असम्बली की जानिब अपना मार्च शुरू कर दिया है। पूरे मुल्क में तिरंगा रैलियों का अहतमाम किया जा रहा है। हर घर तिरंगा मुहिम में तेजी आ रही है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Disruption continues in both houses of parliament amid opposition uproar on several issues. 4 bills, including Tribunals Reforms Bill 2026, introduced in Lok Sabha. Bill aims to improve transparency and efficiency in functioning of tribunals. Protesting students begin their march towards Jharkhand Assembly over alleged irregularities in recruitment examinations. Har Ghar Tiranga movement gains momentum as Tiranga rallies organized across the nation. Over 10 lakh people evacuated as Typhoon Dolphin batters parts of eastern China. World Lion Day being celebrated today. Prime Minister Narendra Modi says India scripted successful conservation journey from 523 lions to 891 in last 10 years. Both Houses of Parliament were adjourned till 2 p.m. following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. As the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, Minister of State for Law

0: Trailing an article written by Union Minister Bhupinder Yadav, Mr. Modi highlighted that the government's unwavering commitment to conservation, backed by strong community participation, is an inspiring example of protecting the country's wildlife and preserving the species for generations to come. Prime Minister Narendra Modi met the medalists of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi yesterday. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. Mr. Modi emphasized that prestige is not gained merely by cutting ribbons, but by playing with the spirit of a young student or an aspiring athlete.
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है
0: The Indian Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand and West Madhya Pradesh for the day. In Himachal Pradesh, intermittent rain has been continuing across most parts of the state this morning. More than 100 roads have been disrupted in several parts of the state due to landslides triggered by heavy rainfall. A report.
2: The monsoon has once again become active in Himachal Pradesh with intermittent light rain being reported from several areas including the state capital Shimla. According to the Meteorological Center Shimla, an orange alert for heavy rainfall has been issued for four districts of the state today, Kangra, Sirmaur, Mandi and Kullu. In view of the weather warning, people have been advised to exercise caution and stay away from rivers and streams. Meanwhile, landslides caused by heavy rainfall have disrupted traffic on more than 100 roads across the state. As many as 255 electricity transformers and around 20 drinking water supply schemes have also been affected. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: In Odisha, IMD has forecast formation of a fresh low-pressure area over the northwest Bay of Bengal around the 13th of this month. A cyclonic circulation is likely to form around tomorrow, bringing another spell of rainfall to the state. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appeals to opposition to allow Home Minister Amit Shah to make his statement and respond to issues raised by members without any disruption. Four bills, including Tribunals Reforms Bill 2026, introduced in Lok Sabha. Bill aims to improve transparency and efficiency in functioning of tribunals. Protesting students begin their march towards Jharkhand Assembly over alleged irregularities in recruitment examinations. Har Ghar Tiranga movement gains momentum as Tiranga rallies organized across the nation. Over 10 lakh people evacuated as Typhoon Dolphin batters parts of eastern China. World Lion Day being celebrated today, Prime Minister Narendra Modi says India's scripted successful conservation journey from 523 lions to 891 in last 10 years. And with that, we end the midday news.
3: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया, तीन अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
4: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी

0: चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ है उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
3: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। यही मांग है कि सीबीआई जांच करा दो और जेएसएससी के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ईडी जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है।
1: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
4: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
1: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
5: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और

0: नेताओं को हिरासत में लिया गया। तीनों जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। नविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
5: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है।

0: है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के चार जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
2: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार। जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में एक बार आप सबका फिर से स्वागत करते हैं। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म द्वारा भी हम आपके संग जुड़े हैं।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। श्रोताओं आपको बता दें कि तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के भक्त जो हैं बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ इस यात्रा पर आते हैं और ये पवित्र यात्रा करते हैं। और आपको बता दें कि जो लोग जो भी ये यात्री जो हैं आते हैं और ये यात्रा करते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है। और यहाँ पर ये भी आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ जो है पूरे हम ये कहेंगे कि हिंदुस्तान से हमारे मुल्क से नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु जो है इस यात्रा के लिए आते हैं। आपको बता दें कि एक गुफा मंदिर की ये बहुत ही असाधारण सी यात्रा है जो हिमालय के उस तपस्वी का घर है जो विनाशक और उपचारक दोनों है और हिंदू देवताओं में सबसे महान माने जाते हैं। अनंतनाग ज़िले में श्री अमरनाथ जी के वो पर्वत पर स्थित अमरनाथ जी गुफा के लिए मशहूर है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 5486 मीटर है। श्री अमरनाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर पहलगाम से लगभग 48 किलोमीटर दूर है और यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु आते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि सिर्फ पूरे भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो है श्रद्धालु इस यात्रा पर आते हैं। ये अनंतनाग ज़िले के ऊपरी इलाकों में समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण ये गुफा साल के ज़्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है और गर्मियों में कुछ समय के लिए ही इसके प्रवेश के द्वार जो है तक पहुंचा जा सकता है। ये गुफा बर्फ की बनी है और इसमें बर्फ के कुछ हम ये कह सकते हैं कि बर्फ के खंभे जैसी आकृतियाँ मौजूद हैं या जो बन जाती हैं।

जी श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में, और हम बात कर रहे हैं इस पवित्र यात्रा को लेकर। आपको बता दें कि इस पवित्र गुफा की बात कर रहे हैं, और ये पवित्र गुफा जो है तीर्थयात्रियों के लिए एक पवित्र जगह है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ होती है और गुफा के अंदर मौजूद बर्फ के खंभे को बर्फ का लिंगम भी कहा जाता है, जो भगवान शिव जी का प्रतीक माना जाता है। बर्फ से बनी दो छोटी आकृतियाँ उनकी पत्नी माता पार्वती और उनके बेटे गणेश जी का प्रतीक मानी जाती हैं। और हिंदू हम ये कहेंगे कि तीर्थ यात्रियों का ये भी मानना है कि लिंगम की ऊंचाई चांद की कलाओं के साथ घटती बढ़ती रहती है। सावन के महीने में अगस्त की पूर्णिमा के दिन हजारों श्रद्धालु इस गुफा की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, और इस समय लिंगम अपने सबसे बड़े आकार में होता है। जब तीर्थयात्री गुफा की यात्रा पर जाते या लौटते हैं, तो ज़िले के ज़्यादातर लोग उनका खुले दिल से हम ये कहेंगे कि स्वागत करते हैं, और रास्ते में चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी के सुंदर नज़ारे देखने को मिल जाते हैं, और यूँ इस यात्रा का आनंद भी लिया जाता है। रास्ते में पड़ने वाले मटन, मारतण, अनंतनाग और बिजबिहाड़ा के मंदिर भी देखने को मिल जाते हैं।

शंकर महाराज एंड नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले शंकर आपके जीवन में खुशियां दे, स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे, आने वाला साल आप। एंड हाँ, आप लोगों से सिर्फ ये विनती रहेगी कि गाने को पूरा देखे शुरू से लेकर। पता नहीं,

0: अरे भाई कहाँ जा रहे हो?
1: मंदिर जा रहा हूँ।
0: मंदिर तो बंद है, मंदिर पूरे एक साल बाद खुलेगा।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। श्रोताओं, हिमालय की तीर्थ यात्राएं सबसे पुरानी व्यवस्थित यात्रा प्रणाली हैं, जिन्हें समय के साथ हिंदू ऋषियों ने विकसित किया और जो घूमने फिरने रोमांच और आध्यात्मिकता की भावना को दर्शाती हैं। हिंदू धर्म की पवित्र त्रिमूर्ति में से एक शिवजी, हम ये कहेंगे कि शिवजी एक जीवित देवता है। हमारे मुल्क की सबसे प्राचीन और पवित्र पुस्तक ऋग्वेद अपने भजनों में उनकी उपस्थिति का वर्णन करते हैं। वैदिक कथाएं, रीति रिवाज और यहाँ तक कि खगोल विज्ञान भी समय की शुरुआत से ही उनके अस्तित्व की गवाही देते हैं। माना जाता है कि शिवजी ने हिमालय को अपना घर बनाया था। उन्होंने तो अपने लिए और ना ही अपने पद

पत्नी के लिए कोई घर या आश्रय बनाया। वे एक तपस्वी थे, फिर भी विवाहित थे। वो दोनों ही रूपों में रह सकते थे क्योंकि वे जंगल में क्रीड़ा करने वाले या बादलों पर आराम करने वाले स्वच्छंद देवता थे। माना जाता है कि शिव जी ने अमरनाथ जी गुफा में माता पार्वती को सृष्टि की रचना का रहस्य बताया था। उन्हें पता नहीं चला, लेकिन कबूतरों के एक जोड़े ने ये बातचीत सुन ली और रहस्य जानकर वे बार बार जन्म लेते रहे और उन्होंने इस गुफा को ही अपना स्थायी निवास बना लिया। कई तीर्थयात्री बर्फ के लिंग शिवजी का जो प्रतीक है उसके दर्शन के लिए कठिन रास्ते पर यात्रा करते समय कबूतरों के उस जोड़े को देखने की बात भी करते हैं।

0: श्रोताओ बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण के साथ, और इस वक्त फोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता मोहम्मद तस्कीन रामबन से। तो आइए इनसे जानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या के कैसे हाल हैं। जी तस्कीन साहब
1: जी, शुक्रिया। राष्ट्रीय राजमार्ग ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बहाल है
0: जी।
1: दोनों तरफ का ट्रैफिक चल रहा है। सुबह से हजारों गाड़ियां जम्मू और श्रीनगर की तरफ अपने अपने मंजिलों की तरफ ये बढ़ गई है
0: जी।
1: और जैसा आपको बताएं, जो 39 रोज से यानी 2 जुलाई जो से जो शुरू हुई थी श्री अमरनाथ यात्रा, वो पिछले 2 रोज से मुअत्तल कर दी गई है हुकाम की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, क्योंकि इसमें मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर यह फैसला लिया गया है। और अब 9 तारीख यानी कल से यात्रा को ऑफिशियली तौर मुअत्तल किया गया है, और फिलहाल यात्रा को अभी आने की इजाजत नहीं है जम्मू से। जबकि जो कश्मीर में जो दर्शन के बाद करीबन 5 लाख श्री अमरनाथ यात्रियों ने अब तक पवित्र गुफा के हिमालयी पहाड़ी सिलसिले में जो आबाद है तो वहां पर जाकर दर्शन किए हैं गुफा के, तो उसके बाद वो वापस भी हो लिए हैं। करीबन 5 लाख के आसपास जो है इस साल जो श्री अमरनाथ यात्रियों की हाजिरी रही पवित्र दर्शन के लिए गुफा पर। तो इस दौरान जो कल का काफिला, आखिरी काफिला जो कश्मीर से जम्मू की तरफ आया, तो इसके बाद आज कोई भी यात्रा के रिलेटेड जो भी गाड़ियां हो वो नहीं आई है। इस दौरान जो लंगर यहाँ रामबन डिस्ट्रिक्ट में कायम है, तो उनमें से कुछ लंगर वालों ने, मतलब अब उनको पता है कि अगर यात्रा शुरू भी हो जाती है तो जो रश है वो ज्यादा
0: नहीं रहेगा,
1: उस वजह से उन्होंने थोड़ा सा वो कुछ ने अपना अपना जो लंगर वगैरह है उन्हें सिमटना शुरू किया। और ऐसी रिपोर्ट्स जो है वो पहलगाम के रूट से भी जो मुख्तलिफ मुकाम पर लंगर लगाए गए थे श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए, तो उन्हें भी जो रिपोर्ट्स हैं कि उनमें भी बहुत सारे लंगर वाले जो है वो अपना जो उसमें कुछ गाड़ियां भी यहाँ से होकर गई, जिन्होंने यहाँ पर लांबर के ग्राउंड में कल भी और आज भी मतलब नाश्ता वगैरह किया, मतलब ऐसे कुछ गाड़ियां वापस जा रही है जो लंगर को लंगर के रिलेटेड है। फिलहाल 12 तारीख को श्री अमरनाथ यात्रा गुफा के लिए जो छड़ी मुबारक रवाना किया जाएगा और पहुंच जाएगी वहां पर, तो इसलिए अभी जो मजहबी रसूमात है, तकरीबात है बहुत सारी, तो वो होना बाकी है और 28 तारीख को इसका इख्तिताम होने की तवक्को है।
0: तस्कीन साहब, आपने कहा कि यात्रा हम कहेंगे कि अपने आखिरी पड़ाव तक जो है पहुंच रही है, जा रही है, उसी की समापन की ओर बढ़ रही है। छड़ी मुबारक के बाद इस यात्रा का समापन भी हो रहा है। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जो यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन करके वहाँ इस यानी कि इस यात्रा अपनी यात्रा को संपूर्ण करके जा रहे हैं या जो चले गए हैं, उनके विचार हैं, ऐसे कुछ हैं जो आप यहाँ पर साझा करना चाहेंगे हमारे यहाँ इन श्रोताओं के साथ?
1: जी बिल्कुल, जो भी आए करीबन अब जो ऑफिशियल फिगर्स है वो 4,80,000 का बताया जाता है कि 4,80,000 श्री अमरनाथ यात्री जो है कश्मीर आए और उन्होंने ये वहां पर गुफा के दर्शन किए। तो इसके अलावा जो हजारों की तादाद में जो टूरिस्ट होते थे वो भी, उनका भी वास्ता पड़ा, जो लंगर वगैरह लगाए गए थे हजारों की तादाद में, उन्होंने भी वहां पर स्टे किया, खाना खाया, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रहा गया था, रिस्ट्रिक्शन रखी गई थी हाईवे पर चलने के लिए 2-3 बजे के बाद रामबन डिस्ट्रिक्ट से कश्मीर की तरफ आने की इजाजत नहीं थी। इसलिए जो भी यात्री आए उनके लिए जो खिदमत के लिए जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी, इंतजाम था, जो मुलाजमीन थे, दर्जनों लंगर लगाए गए थे, तो इसका लोया सिक्योरिटी के जो इंतजाम थे, पुलिस, आर्मी, CRPF, SSP, CISF, मतलब हर तरह का जो फूल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे, हर तरह से खुश होकर गए हैं। जो भी यात्री अब तक जो 37 रोज तक हमारी यात्रा चली, तो इसमें जो लाखों की तादाद में लोग आए, तो उनमें से आपको कोई ऐसा मिलेगा शायद कि जो ये बताए कि मतलब मैं इंतजाम से खुश नहीं हूँ या मुझे कोई वो यहाँ अच्छा नहीं लगा, लेकिन हर एक ने यही तारीफ

0: थी, क्योंकि यात्रा बहुत कामयाब तरीके से तस्वर की इस साल जो मतलब इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। अभी इसके कुछ पड़ाव और बाकी है, लेकिन फिलहाल जो मुअत्तल की गई है, तब तक जितने भी लोग आए, 5 लाख के करीब लोग आए, सभी खुश होकर यहाँ से गए हैं। जो आए उनसे भी हमने दर्जनों लोगों से बात की, जो वापस गए उनसे भी बहुत लोगों से बात की, तो इसलिए सबके तासुरात यही थे कि वो जो भी इंतजाम किए गए थे उनके लिए, उनसे बहुत खुश थे और बिल्कुल इत्मीनान बख्श थे जो इंतजाम किए गए थे। इंतजामिया की तरफ से, सरकार की तरफ से, पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसी बशमूल आर्मी के, उनकी तरफ से हर तरह के इंतजाम थे। चप्पे चप्पे पर जो यात्रियों के लिए रखा गया था, जैसे हाईवे का खासकर इसे हर लिहाज से ट्रैफिक के काबिल रखना, फिर दूसरे जो रूट हैं जो पहलगाम और बालतल के रास्ते जिसमें दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिलों में लेकर जाना है आपको यात्रा को, तो उसको कामयाबी से अपने इख्तिताम को पहुंचना एक बड़ी बात है, और 5 लाख लोगों को उनको किसी किस्म की शिकायत का मौका न देना ये बड़ी बात है।
1: ये बड़ी बात है, तो हम कह सकते हैं कि प्रशासन जो है पूरी तरह से इन व्यवस्थाओं को लेकर सफल इस बार जो है, हर बार की तरह इस बार भी जो है सफल ही रहा, है ना?
0: बिल्कुल, हर वक्त जब भी अब देखेंगे, हम बहुत सालों से हम बालतल रेडियो के लिए भी, हम जो एफएम रेडियो स्पेशली जो ट्रांसमिशन है श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए, तो वो हम पिछले कई साल से चल रहा है, तो अभी तक जो भी इंतजाम थे बहुत बेहतर ही होते हैं, और हर नए साल के साथ इनमें जो मजीद इंतजाम बेहतरी आती है, जो कमी पीछा रहती है, तो वो हर अगले साल के साथ उन्हें निपटाया जाता है, उससे बेहतर इंतजाम होते हैं, और बिल्कुल कामयाब तरीन यात्रा रही इस साल की 2026 की श्री अमरनाथ यात्रा।
1: और भी ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो है मौसमी उतार चढ़ाव काफी देखने को मिल रहे हैं, तो इस वक्त जो है आज का मौसम आप बताएं कि हम बनिहाल जिले, रामबन जिले की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो कैसा मौसम छाया हुआ है वहाँ पे?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जो मौसम जैसे मौसम जो कहा गया था कि बारिशें होने वाली, अब कल उसमें जो तब्दीली आई है, क्योंकि ये अब मौसमी हवाओं का सिलसिला है जो बादलों को चलाते हैं, तो उसमें कोई कमी पीछे आने से या हट जाने से बादलों के दूसरे, उस वजह से जो अब कल से कहा गया है जो महकमा मौसमियात की तरफ से कि अब बारिशों का कम इम्कान है 15 तारीख तक, अगर होंगी भी तो हल्की होंगी, जो मतलब शदीद बारिशों की पेशनगोई पहले की गई थी जम्मू डिविजन के इलाकों में, खासकर उधमपुर, रियासी और जम्मू के प्लेनों में बहुत बारिश का कहा गया था, लेकिन वैसा तब्दीली उसमें आई है। मौसमी जो पेशन गोई थी, जो मौसम के बारे में जो प्रेडिक्शन की गई थी, उसमें थोड़ी सी अब तब्दीली है, उसमें कहा गया है कि अब ये जो मौसम जो है हल्की फुल्की बारिशें हो सकती है कुछ मकाम पर, ये मतलब 15 अगस्त तक के लिए कहा गया है, तो लेकिन फिलहाल आज भी अगर कहेंगे गर्मी थी आज, लेकिन धूप और बादलों का जो खेल था, सिलसिला था, वो दिन भर जारी रहा, और इस वक्त हवाएं चल रही है और हाईवे पर जो ट्रैफिक है भारी तादाद में अपने अपने मंजिलों की तरफ गुजर रहा है। इस दौरान अगर कहेंगे तो पिछले जब ये जो 7 तारीख से बारिशें भी, मतलब अब ये मौसम कि जब मॉनसून जब होता है तो उसका एक ये सिलसिला ही रहता है कि एक इलाके में धूप होती है तो दूसरे इलाके में हल्की फुल्की बारिश होती है, तो वैसा कल भी हुआ, परसों भी हुआ, लेकिन उन्हें हम एक मुकम्मल बारिशों का सिपल नहीं कह सकते हैं, लेकिन हल्की हल्की बारिशों का जो कहा गया है ये रहेगा, और वो मतलब बाद इलाकों में अगर हम जम्मू डिविजन के कहेंगे पहाड़ी सिलसिले हैं, कई मुकाम हैं, तो उनमें जो हल्की हल्की बारिशों का सिलसिला कल शाम भी हुआ है।
1: तस्कीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विस्तृत विवरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत शुक्रिया।
1: जी श्रोताओं, ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता मोहम्मद तस्कीन राष्ट्रीय राजमार्ग से, जिन्होंने ये बताया कि बाबा बर्फानी की यात्रा पर आए हुए जो यात्री हैं, जो आ रहे थे, जो यात्रा संपूर्ण करके वापस भी जा रहे थे, वो इस यात्रा को लेकर, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर बहुत ही प्रसन्नता के साथ वापस गए। और हाँ, हालांकि मौसमी उतार चढ़ाव जो है वो काफ़ी देखने को मिल जाते हैं, और हम अगर कहें ख़ास तौर से इस श्रावण के महीने में, तो ये मौसम जो है बदलता रहता है, लेकिन मौसम के बदलने से हम कहेंगे कि यात्रियों या यात्रा में जो है कोई बाधा, ख़ास किस्म की बाधा जो है देखने को नहीं मिली। यात्री काफ़ी प्रसन्नता के साथ इस यात्रा को संपूर्ण करके जा रहे हैं, और ख़ास बात ये भी है कि 12 तारीख से एक इस यात्रा का एक बहुत ही ख़ास महत्वपूर्ण अध्याय जो है शुरू होने वाला है, यानी छड़ी मुबारक की यात्रा जो है शुरू होने वाली है, और हम यही कहेंगे कि हमारी यही प्रार्थना है कि ये यात्रा जो है इसी तरह से सफलता

श्रोताओं, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए यात्रा को अभी जो है पिछले 2 दिनों से स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। और लेकिन यहाँ पर ये भी कहना चाहेंगे कि 5 लाख के करीब का जो है आंकड़ा है जिन श्रद्धालुओं ने बाबा भोले के दर्शन किए हैं, और वो भी कड़ी सुरक्षा के बीच और बहुत ही सुखद तरीके से और बहुत ही अच्छी अच्छी व्यवस्थाओं के साथ और प्रसन्नता के साथ जो है ये श्रद्धालु जो है बाबा भोले के दर्शन करके वापस भी जो है जा रहे हैं, और कुछ जा रहे हैं और कुछ जा भी चुके हैं। और हम यही कहेंगे कि ये यात्रा जो है सफलतापूर्वक अभी भी चल रही है, और हमारी यही कामना है कि आगे भी जो है इसी तरह से ये यात्रा चलती रहेगी।

श्रोताओं, सावन के इस महीने में हम ये कहेंगे कि जुलाई और अगस्त में अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान श्रद्धालु इस अद्भुत तीर्थ स्थल पर बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ भगवान शिव जी का लिंग प्राकृतिक रूप से बर्फ के जमाव से बनता है, जो चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ ही घटता बढ़ता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके बगल में बर्फ के दो और लिंग भी पाए जाते हैं, एक माता पार्वती का और दूसरा उनके पुत्र श्री गणेश जी का।

श्रोताओं, अब बात करते हैं पवित्र गुफा की खोज के बारे में। एक पुरानी कहानी के अनुसार बुट्टा मलिक नाम के एक मुस्लिम चरवाहे को एक साधु ने कोयले की एक बोरी दी थी और घर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि बोरी में असल में सोना था। बहुत खुश होकर बुट्टा मलिक उस साधु को ढूंढने और उनका शुक्रिया यानी कि उनका धन्यवाद अदा करने के लिए वापस गए, लेकिन जहां वे मिले थे वहां उन्हें एक गुफा मिली और आखिरकार ये जगह जो है सभी मानने वालों के लिए तीर्थ स्थल बन गई। आज भी तीर्थयात्रियों द्वारा दिए गए दान का एक हिस्सा बुट्टा मलिक के वंशजों को दिया जाता है और बाकी हिस्सा उस ट्रस्ट को दिया जाता है जो इस पवित्र स्थल का प्रबंध करते हैं। आपको ये बता दें कि एक और कहानी के अनुसार जब कश्यप ऋषि ने कश्मीर घाटी से पानी निकाला, माना जाता है कि ये एक विशाल झील थी, तो हिमालय की यात्रा कर रहे भीगु ऋषि को गुफा और शिवलिंग मिले और जब लोगों को शिवलिंग के बारे में पता चला तो अमरनाथ जी उनके लिए शिव जी के निवास का जो निवास स्थान है और तीर्थ स्थल ये बन गया।

श्रोताओं, अभी इस प्रसारण में हम बात कर रहे हैं इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में। और अभी आपको बता दें कि पंडित कल्हन जी ने राजतरंगी में इस पवित्र गुफा का जिक्र किया है। उनके अनुसार राजा रामदेव ने अयांश राजा सुखदेव को कैद कर लिया था और अमरनाथ जी के पहाड़ों के बीच लिदर नदी में डुबो दिया था और साथ ही लगभग 1000 ईसा पूर्व राजा संधिमती ने पवित्र बर्फीले शिवलिंग के दर्शन भी किए थे। इससे पता चलता है कि श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के बारे में लोगों को पुराने समय से ही पता था। श्री अमरनाथ जी तीर्थ स्थल, हम ये कहेंगे कि तीर्थ का जिक्र जो है पुराने ऐतिहासिक वृत्तांतों में अमरेश्वर के रूप से मिलता है। और कहा जाता है, माना जाता है कि कश्मीर के नेक शासक सुल्तान जैनुलाबदीन ने भी इस पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। अमरनाथ जी की खोज से जुड़ी कहानियाँ और इतिहास, चाहे जो भी हो, आज ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हालांकि यहाँ का रास्ता जितना रोमांचक है उतना ही मुश्किल भी। फिर भी हर साल हजारों लाखों भक्त जो है, हजारों लाखों श्रद्धालु शिव जी के हिमालय स्थित प्रसिद्ध धामों में से एक में उनके दर्शन करने अवश्य आते हैं।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा के विशेष प्रसारण में, और ये प्रसारण जो है आप सुन पा रहे हैं FM बालथल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म द्वारा भी जो है आप ये विशेष प्रसारण सुन पा रहे हैं। और श्रोताओं अब हम बात करते हैं इस तीर्थ यात्रा की शुरुआत की। आपको बता दें कि कश्मीर बहुत ही पुराने समय से ही देवी देवताओं का निवास स्थान रहा है। इनमें सबसे पवित्र और मशहूर जगह है श्री अमरनाथ जी गुफा, जहां अमर भगवान शिव जी का वास है। ये गुफा समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि इस तीर्थ यात्रा की शुरुआत के बारे में संस्कृत की किताब ब्रिंगेश संहिता में बताया गया है कि इसमें लिखा गया है कि ऋषि ब्रिंगेश ने अपने शिष्यों को अमरनाथ जी गुफा का महत्व बताया और उन्हें पवित्र गुफा में जाकर बर्फ से बने पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने का निर्देश दिया। हालांकि तीर्थयात्रियों को राक्षसों से परेशानी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन तब ऋषि ब्रिंगेश ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की और भगवान शिव जी ने ऋषि को ऋषि की जो ये यात्रा है सुरक्षित बनाने के लिए एक छड़ी बेंट की, ये माना जाता है। तब से ये तीर्थयात्रियों के जत्थे की सुरक्षा का प्रतीक कर रही है और अब इसे छड़ी मुबारक के नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है। पारंपरिक यात्रा आम तौर पर हर साल रक्षाबंधन की पूर्णिमा यानी अगस्त के आखिरी हफ्ते के आसपास पर गुफा तक पहुंचती है और छड़ी, इस पवित्र छड़ी के साथ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री साधु संत मंत्रों का जाप करते हुए चलते हैं।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा के विशेष प्रसारण में, और अभी जो है हम बात कर रहे हैं इस पवित्र यात्रा से जुड़ी, और अभी हम आपको इस पवित्र गुफा का विवरण जो है आपको दे देते हैं, आपके साथ साझा करते हैं। श्रोताओं आपको बता दें कि ये पवित्र गुफा काफ़ी बड़ी है। इसका प्रवेश द्वार क्षितिज रूप से लगभग 40 गज चौड़ा और ऊंचाई में लगभग 75 फीट है। ये पहाड़ के अंदर 80 फीट की गहराई तक ढलान वाली है और गुफा के भीतर बर्फ का लगभग 5 फीट ऊंचा शिवलिंग है, और जिसको हम ये कहें कि जिसके शीर्ष पर शंकु यानी कि कोन जैसी आकृति बनी है, ये स्पष्ट रूप से भगवान शिव जी का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग के बाईं ओर बर्फ का एक छोटा टुकड़ा है जो भगवान गणेश जी का प्रतिनिधित्व करता है, और उनके भी बाईं ओर बर्फ की एक छोटी आकृति है जो देवी पार्वती का प्रतीक माना जाता है। बर्फ़ की ये आकृतियाँ गर्मियों के दिनों में बनती हैं और चंद्रमा की कलाओं के साथ घटती बढ़ती रहती हैं, और पूर्णिमा के दिन इनका आकार पूर्ण होता है, जबकि अमावस्या के दिनों में ये पूरी तरह से लुप्त हो जाती हैं।

श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा के विशेष प्रसारण में। और अब आपको पवित्र गुफा के महत्व के बारे में बता दें। सदियों से लाखों महान और आम लोग, बुजुर्ग, जवान, बच्चे इस गुफा, इस पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए मुश्किल यानी कि कठिन और थका देने वाली यात्रा करते हैं। इनमें सबसे विशेष की अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने 1898 में इस पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। स्वामी रामतीर्थ और सबसे बढ़कर महान संत स्वामी शंकराचार्य जी, जिन्होंने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए दक्षिण से यात्रा की थी। श्रोता, आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद जी की इस पवित्र गुफा की यात्रा के बारे में मार्गरेट नोबल, जिन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी किताब नोट्स ऑन द वंडरिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में दिलचस्प बातें बताई हैं। वे कहती हैं कि गुफा के अंदर स्वामी जी इतने भावुक हो गए थे कि उनका पूरा शरीर कांपने लगा और वे गहरी भावना के कारण बेहोश हो गए थे। सिस्टर निवेदिता ये भी लिखती हैं कि वो लिखती हैं कि वो जगह जो है बहुत ही विशाल थी, इतनी बड़ी कि उसमें एक कैथेड्रल यानी कि एक बड़ा सा चर्च समा सकता था। और बर्फ से बने विशाल शिवजी घने अंधेरे वाले एक कोने में ऐसे पवित्र ढंग से विराजमान थे मानो अपने आसन पर बैठे हों। वे बताती हैं कि स्वामी जी ने उन्हें बताया था कि गुफा में उन्हें एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव भी हुआ था। भगवान शिव जी स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें ये वरदान दिया कि जब भी वे चाहें तब उनकी मृत्यु हो सकेगी।

श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में आप हमारे संग बने हुए हैं। FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती की वेव्स OTT प्लेटफॉर्म द्वारा भी हम आपके साथ बने हुए हैं।

श्रोता बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा के विशेष प्रसारण के साथ, जो आप सुन पा रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, डीटीएच की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी जो है हम उपलब्ध हैं। और अब आपको बता दें कि अब से बस कुछ ही क्षणों में आपको सुनवाते हैं बालताल में रिकॉर्ड की गई आरती। चलिए आनंद लेते हैं इस आरती का।

धर्म प्रेमी बंधुओं, बाबा के इस पवित्र धाम में, पवित्र गुफा में आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। MH1 चैनल के माध्यम से देश एवं विदेश में जो भी भक्तजन बाबा के इस दिव्य गुफा का दर्शन कर रहे हैं, पवित्र आरती का दर्शन कर रहे हैं, उन सभी भक्तजनों का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी भक्तजनों के ऊपर भोले बाबा की विशेष कृपा है कि जो भोले बाबा के दिव्य दान से प्रातःकाल एवं सायंकाल की आरती का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।

देवादिदेव महादेव संपूर्ण जगत के कण कण में विद्यमान है। कर्पूर गौरम, भगवान देवादिदेव कर्पूर के समान जिनका गौर वर्ण है। करुणावतारम, जो करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, जो समस्त संसार के सारभूत हैं। भुजगेंद्रहारम, जिन्होंने अपने कंठ में अपने गले में सर्पों की माला धारण किए हुए हैं, जिन्होंने अपने गले में मुंड मालाएं धारण किए हुए हैं, ऐसे देवादिदेव भोले बाबा अमरनाथ स्वामी हम सब शिव भक्तों के ऊपर, हम सब भक्तजनों के ऊपर निरंतर माँ घोरा के साथ निरंतर हमारे हृदय में बात करें। तो इसी के साथ सभी भक्तजन आरती का आनंद लेंगे और विद्वान जनों के द्वारा आरती श्रवण करेंगे। बोलिए।

0: जाए।
1: सभी भक्तजन भोले बाबा के चरणों में बैठकर भोले बाबा की दिव्य आरती श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, प्रीति के साथ दोनों हाथों से ताली का वादन करते हुए भोले बाबा के सुंदर भजन का ध्यान करेंगे। बोलिए।

0: भोले के सर पापिराजे, भोले के गल में सर पापिराजे, भोले के गल में सर पापिराजे, सर पापिराजे जी सर पापिराजे,
1: सर पापिराजे जी सर पापिराजे।

0: जय शंकर भगवान की, जय धर्म के,
1: जय हो
0: अधर्म का
1: विनाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भाव न हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय हो,
0: मात पिता की
1: जय हो,
0: गुरु जनों की
1: जय हो,
0: सभी संतों की
1: जय हो,
0: सभी भक्तों की
1: जय हो,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय हो,
0: आज के आनंद की
1: जय हो,
0: भारत माता की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के घनों की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जय हो,
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जय हो,
0: बाबा बर्फानी की
1: जय हो,
0: नमः पार्वती पते हर हर हर महादेव। शिव शंभो निरावलंबस्य ममावलंबं विपतिताशेष विभक्तं ब्रह्मदेय पापाचल पाद शंभ प्रवर्तताम्।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा के विशेष प्रसारण में, और अब इस प्रसारण का समय जो है समाप्त हो रहा है, यानी इसी के साथ ही हमारी आज की ये सभा संपन्न होती है। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ हमारे साथी इंजीनियर्स रहे जावेद अहमद, इरशाद अहमद और सहायक मोहम्मद सलीम, और मैं आपकी साथी उद्घोषक सायका सलीम, और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री गुलाम रसूल वानी, श्री वसीम फारूक वानी। प्रातः 6:53 पर श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण के साथ आपकी सेवा में दोबारा उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि, जय हिंद।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

राजभवन का आंगन किलकारियों से गूंज उठता है। चारों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, माताएं बलैया ले रही हैं और राजा दशरथ झुनझुना बजा रहे हैं।

इधर मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और राज दरबार जहां मुनि का स्वागत हो रहा है।

हाथ जोड़ राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आप कै दुनिया भयल सनाथ। हमसे ज्यादा आप कै हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार।

इधर राम लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। जनकपुर की स्त्रियां उन्हें अपलक निहारते हुए उनके सौंदर्य की आपस में चर्चा इस तरह से कर रही हैं।

0: श्रावण मास के पवित्र अवसर पर प्रस्तुत है द्वादश ज्योतिर्लिंग पर आधारित ये कार्यक्रम, जिसमें आज आप जानेंगे श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम ओम नमः शिवाय।
1: नमस्कार। सावन का महीना जो कि भगवान शिव को समर्पित है, इस महीने भगवान शिव को और पूरी प्रकृति को, पूरे प्रकृति भी अभिषेक करती है, उसी तरह से भक्त भी अपने भक्ति के द्वारा, अपनी यात्रा के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव की अर्चना करते हैं। और इसी कड़ी में आज प्रस्तुत है ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर, जो कि महाराष्ट्र के दौलताबाद में स्थित है। और यह जो ज्योतिर्लिंग है, ये अजंता अलोरा गुफाओं के समीप है, देवगिरी पर्वत है उसके पास है। इसका नाम घृणेश्वर और घृष्णेश्वर भी है। घुश्मेश्वर के नाम से ये ज्योतिर्लिंग वहाँ पर स्थापित हुआ और वहाँ पर आज भी लोग अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए यात्रा करते हैं, वहाँ पर अनुष्ठान करते हैं। जिनकी कोई संतान नहीं होती है, वो वहाँ की यात्रा करके संतान को पाते हैं। श्री घुश्मेश्वर की स्तुति प्रस्तुत है। घोराय गौरी पते वराय गंगाधराय द्युतिशेखराय गजास्य पित्रे गिरिजा प्रियाय घुश्मेश्वराय प्रणति शिवाय गिरीश्वरायो गृगणार्चिताय गणेश पूज्याय गुपे गमाय अघोर नेत्रे गरलोग पाय

0: गुणप्रियाय घुष्मेश्वराय प्रणति शिवाय घनाधराय मरपूजिताय घटादिनाथाय गुणाकराय प्रध्यक्षमित्रे घटकप्रियाय घुष्मेश्वराय प्रणति शिवाय महाराष्ट्रप्रदेशे देवगिरिस्थिते स्थितं घुष्मेश्वरमहं नौमि ज्योतिर्लिङ्गं नमाम्यहं स्तोत्रं घुष्मेश्वरस्येतत् यः पठेत् श्रद्धया सदा तस्य सिद्ध्यन्ति कार्याणि कल्याणञ्च भवेत् सदा। द्वादशज्योतिर्लिङ्गानां भक्त्यां विलिखितं हि यत् तज्जीतरामभट्टेन शिवाय स्तोत्रमत्परिते महाराष्ट्र प्रदेश में देवगिरी नामक स्थान पर स्थित श्री घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य श्री घुष्मेश्वर के इस स्तोत्र को सदा श्रद्धापूर्वक पढ़ता है उसके सभी कार्य सफल होते हैं, उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसका कल्याण होता है। और इस स्तोत्र को मैं भगवान शिव को समर्पित करते हुए प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। अभी आप इस कार्यक्रम में श्री घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुन रहे थे।

दूसरी कड़ी में आप धनुर्भंग तक का प्रसंग सुन चुके हैं। आज प्रस्तुत है श्री विश्व प्रकाश दीक्षित पटुक की लिखी हुई तीसरी कड़ी

0: रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ आनंदित हुए। सबके हृदय में यही अभिलाषा उत्पन्न हुई और सब शिवजी से यही प्रार्थना करने लगे कि राजा दशरथ अपने रहते श्री रामचंद्र को युवराज का पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा। राजसभा में बैठे हुए राजा दशरथ ने स्वभावतया हाथ में दर्पण लिया, उसमें अपना मुख देखा और शीश का मुकुट सीधा किया। राजा ने देखा श्रवण समीप भये सित के सा। उन्हें लगा मानो बुढ़ापा उपदेश कर कह रहा है,
1: नृप जब राज राम कह देहु जीवन जन्म लाह किन ले हु।
0: राजा दशरथ ने इस पर विचार कर शुभ दिन और सुंदर समय पाकर गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया,
1: मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक, सेवक मंत्री नगर निवासी शत्रु मित्र उदासीन सब कोई राम को मेरी ही तरह प्रेम करते हैं। आपके ही समान परिवार सहित विप्रगण भी उन्हें स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। आपके पवित्र चरणों की धूली की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे पूज्य ही नाथ अनुग्रह तोरे।
2: राजन आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है।
1: नाथ राम करिए ही जुब राजू, आप कृपा कर आज्ञा दें तो तैयारी की जाए। मैं कहता हूं कि मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिसमें सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही, यह लालसा एक मन माही। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर कोई चिंता नहीं।

0: शरीर रहे या चला जाए।
1: सुनु नृप, जासु विमुख पछ ताही, जासु भजन बिनु जरने न जाही, वही सब लोगों के स्वामी श्री राम आपके पुत्र रूप में है, इसलिए देगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल

0: ज्यों पांच ही मत लागे नीका, करहु हरखी ही रामही टीका। मुनिवर की आज्ञा के अनुसार राज्याभिषेक का सब प्रबंध शीघ्र किया जाए। मुनिवर ने प्रसन्नतापूर्वक मृदुवाणी में संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल, आवश्यक औषध, मूल फूल फल और पत्रादि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनवाकर बताए। चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों की ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार के रत्न तथा बहुत सी मांगलिक वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की आज्ञा दी। मुनिवर ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा,
1: नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों के चारों ओर रोप दो, सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो, श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेवों की सब प्रकार से सेवा करो, ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ।
0: मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ के वचनों को शिरोधारी करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनिवर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वो काम इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले से ही कर रखा था। राम के राज्याभिषेक की सब तैयारियां होने लगी, अयोध्या में बधावे बजने लगे और

0: एहि अवसर मंगल परम सुनि रहसेउ रनिवासु शोभत लख विधु बढ़त जनु बारिधि बीच बिलासु। रनिवास में भी ये मंगल समाचार पहुंचा दिया गया। सभी रानियां मंगल कलश सजाने लगी। कौसल्या ने नाना वित्तान दिया। वे प्रार्थना करने लगी, जे ही विधि होए राम कल्याणु देहु दया करी सो बरदानु। चारों ओर आनंदमय मंगल गान होने लगे। राम राज अभिषेक सुन ही हर खे नर नारी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। राजा दशरथ की इच्छानुसार मुनि वशिष्ठ श्री राम को उपदेश देने के लिए उनके महल में गए। गुरु जी का आगमन सुनते ही श्री राम ने द्वार पर आकर गुरु वशिष्ठ के चरणों में मस्तक नवाया, आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें भवन में लाए, विधि पूर्वक पूजा करके उनका सम्मान किया, फिर सीता सहित उनके चरणों का स्पर्श करके बोले,
1: सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। नाथ, उचित तो ये था कि प्रेम पूर्वक इस दास को ही बुला भेजते, नीति भी यही कहती है, किंतु आपने बड़प्पन त्याग स्वयं यहां पधार कर मुझे जो स्नेह दिया उससे आज ये घर पवित्र हो गया। आयुष होई सो करों गोसाई सेवक लहे स्वामी सेवका।

0: आई। भला राम ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। रामभद्र, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुवराजू। राम, करहु सब संयम आजू, जौ विधि कुशल निबाही काजू।
1: जैसी गुरुदेव की आज्ञा, मैं आपके आशीर्वाद का अभिलाषी हूं। गुरुदेव ये क्या कहकर चले गए, हम सब भाई एक ही साथ जन्मे। खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुआ, लेकिन इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही हो।
0: इधर तो नरनारी राज्याभिषेक के मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे, उधर बिघन मना वहीं देव को चाली, क्योंकि तिनहि सुहायन अबध बधावा, चोरहि चांदनी रात न भावा। सरस्वती को बुलाकर देवताओं ने विनय की, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे राम राज्य को त्याग कर वन को जाएं और देवताओं का कार्य सिद्ध हो। देवताओं की बात सुनकर सरस्वती पछताने लगी, किंतु देवताओं की बार बार विनय सुनकर उनकी बुद्धि पर पश्चाताप करती वे वहां से चल दी। ऊंचे निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। किसी प्रकार वे अयोध्या आई और नाम मंथरा मंदमति चेरी केकई केरी, अजस पिटारी ताही कर गई गिरा मति फेरी। सरस्वती देवलोक को वापस चली गई। तदनंतर मंथरा नगर की सजावट देखकर लोगों से उत्साह का कारण पूछती हुई श्री राम के राज तिलक की बात सुनकर हृदय में जल उठी। वो बुद्धिहीन दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार ये काम रात ही रात में बिगड़ सकता है। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है, वैसे ही श्री राम के राज्याभिषेक के पुण्य कार्य को बिगाड़ने की चालें सोचती हुई मंथरा भरत मां तो पह गई बिलखानी।
2: अरे मंथरा, तू उदास क्यों है? गालु बड़ तोरे दीन लखन सिख असमन मोरे। अरे कहते क्यों नहीं, राम राजा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुशल से तो हैं।
3: कत सिख दे हमई को माई, गालू करब कही करबलु पाई। राम ही छाड़ कुशल कही आजू, जही जनेसु देई चुबराजू। कौशल्या के तो विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं, इसीलिए वे कर्म में फूली नहीं समाती। मुझसे क्या पूछती हो, देखहु कसना जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु शोभा। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हो बस ना हो हमारे। रानी तुम्हें तो तोषक तकियों से सजे पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है, राजा की कपट चतुराई तुम्हें दिखाई नहीं देती।
2: बस बस चुप रह, पुनिया से कब हूँ कहा से घर फोरी, तब धर जीभ कढ़ावाऊं तोरी।
3: हमें क्या, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कहते।
2: प्रिय वादिनी सिख दीना हूँ तो ही, सपने हूँ तो पर कोपु न मोही। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन राम का राज्य तिलक होगा। सूर्यवंश की तो ये रीति है कि बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक बने। राम तिलक को जो साचो हूँ काली, देव मांग मन भावत आली। राम को सहज स्वभाव से कौशल्या के समान ही सब माताएं प्यारी हैं। मोह पर गरहि स्नेहु बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। अगर विधाता कृपा करके मुझे दोबारा मानव देह दें तो ये भी दें कि राम पुत्र और सीता वधु हूं। राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके राजतिलक की बात सुनकर

0: तुझे क्षोभ कैसा? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच बता कि क्या बात है, हर्ष के समय विषाद करने का क्या कारण है?
1: एक ही बार आस सब पूछी, अब कुछ कह जीव करी तुझी। फोर जोक कपारु अभागा, भले हु कहते दुख रो रही लागा। अरे माई, तुम्हें तो वो ही प्यारे लगते हैं जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, मैं तो तुम्हें कड़वी लगती हूँ। हम हूँ कही बाब ठकुर सुहाती, नहीं तो मौन रहू दिन राती। विधाता ने कुरू बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष देना, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कौन पुहो हमें कहानी, चेर छाड़ अब होप की रानी। जा रही जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाई तुम्हारा। इसीलिए कुछ बात चलाई थी, छमही देव बड़ चूक हमारी।
0: अरे तू बुरा मान गई, तू तो मेरे हित की ही कहती है, बता तो भला क्या बात है?
1: तुम पूछो मैं कहत डरा हूं, थरे हूं मोर घर फोरी ना हो। पर चलो, मैं तो आपको अपना सब कुछ मानती हूं, इसीलिए कहती हूं। रानी, तुमने जो कहा है कि तुम्हें सीता और राम प्यारे हैं और राम को तुम प्यारी हो, सो ठीक ही है, लेकिन रहा प्रथम, अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु होई प्रीते। देखो, सूरज कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूरज कमल को जलाकर भस्म कर देता है।
0: अरे तू कहना क्या चाहती है मंथरा, साफ साफ कह।
1: सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है,
0: क्या
1: उपाय की पार लगाकर उसकी रक्षा करो। तुम्हें ही न सोच सुहाग बल, निज फस जान न हुराओ, लेकिन रानी मन मलीन मुंह मीठ नृप, राउर सरल स्वभाव।
0: मंथरा,
1: राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी थाक कोई नहीं पा सकता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली, राजा ने भरत को जो ननियाल भेज दिया उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी सेवा करती हैं, एक भरत की माँ ही ऐसी है जो पति के बल पर गर्व करती है। इसीलिए माई, कौशल्या को तुम बहुत ही चुभ रही हो, वो कपट करने में बड़ी चतुर है, इसीलिए उसके हृदय का भाव आसानी से जाना नहीं जाता।
0: लेकिन राजा?
1: हाँ, राजा ही तुम पर प्रेम अभिषेकी, सबती स्वभाव सकई नहीं देखी, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत के यहाँ ना होने पर राम के राज तिलक के लिए लगन पक्का करा लिया।
0: लेकिन राम का राज तिलक हो?
1: राम का राज तिलक हो, ये तो रघुकुल के अनुकूल ही है, ये बात सबको सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है।
0: आगे की क्या बात मंथरा?
1: भगवान करे उसका उल्टा फल कौशल्या को ही मिले।
0: मंथरा, तुझे मेरी सौगंध, तू कुछ छिपा मत, सब सच सच बता, तुझसे बढ़कर मेरा हितकारी भला और कौन हो सकता है?
1: कहा पूछो, तुम अबहू न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। पूरा पखवाड़ा बीत गया नगर को सजते, और तुमने खबर पाई है आज, वो भी मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। अगर मैं अपनी ओर से बना के झूठ कहती हूँ तो भगवान मुझे दंड देगा।
0: नहीं मंथरा, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ, तू झूठ क्यों कहने लगी?
1: अगर कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मेरी बात को पत्थर की लकीर समझना, रेख खंचाई कहूं भले।

0: खाखी, भामनी भयहु दूध कई माखी। अगर अपने बेटे भरत सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा नहीं। कत्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब होंगे।
1: मंथरा
0: रानी, धीरज धरिए, घबराने से काम नहीं चलेगा, साहस के साथ कोई उपाय सोचिए।
1: मंथरा, तू ठीक कहती है, दाहिनी आंख नित भर गई मोरी। मैं रोज रात को बुरे सपने देखती हूँ, लेकिन अपने अज्ञान के कारण तुझसे कहती नहीं। काह करो सखी, सूत सुभाओ, दाहिन बाम न जानो काओ। जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। न जाने दैव ने मुझे एक साथ ही ये कठिन दुख किस पाप के बदले दिया।
2: नई हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करबी सवति सेवकाई।
1: शत्रु के वश में रहकर जीने से मर जाना अच्छा है।
0: रानी, अस कहूं माने मनुना, सुख सुहाग तुम कहूं दिन दुना। पर कह देती हूं, जे ही राउर अति अनभलता का, सोई पाए यहु फलु परिपाका। स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमत सुना है, तब से मुझे न दिन में चैन है, न रात को, न भूख लगती है, न नींद ही आती है।
1: मंथरा, तब
0: तुम चिंता मत करो रानी, मैंने ज्योतिषियों से पूछा था, उन्होंने रेखाएं खींचकर हिसाब लगाकर कहा, भरत भुआल हुई ये साची।
1: सच
0: रानी, अगर तुम कहो तो मैं एक उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में तो हैं।
1: परम कूप तो वचन पर सकूं पूत पति त्याग। जब तू मेरा ये महान कष्ट देखकर कह रही है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। तू कह तो सखी।
0: स्वामिनी, सुध आई है कि नहीं? तुमने मुझसे एक कथा कही थी, उसके अनुसार दुई वरदान भूप संथाती, मांगहु आज चुड़ा पहुंचाती। पुत्र को राज और राम को बनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो।
1: सखी मंथरा,
0: एक बात का ध्यान रखना, जल्दी मत करना। भूपति राम शपथ जब करी, तब मांगहू यही वचन न डरे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरा कहा मानो, सीधे गोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, सहसा ही राजा की बातों में मत आ जाना।
1: सखी, तू मुझे बहुत प्रिय है, प्राणों से भी प्रिय, तू बहुत ही बुद्धिमान है। संसार में मेरा तेरे समान हितकारी दूसरा नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पुरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतरी आली।
3: इस प्रकार दासी को अनेक प्रकार का आदर सम्मान देकर कोप भवन गवनी कह के श्रोताओं,

0: अंततो गत्वा सांझ समय सानंद नृप गयउ केकई गे हैं।
1: लेकिन कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ,
0: डर के मारे राजा के पैर आगे नहीं उठते। कैसी विडंबना है, स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर निवास करता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए।
1: सभय नरेश प्रिया पहि गयउ, देखि दशा दुख दारुण भयउ।
0: राजा ने देखा कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए, शरीर के सभी आभूषण उतार कर फेंक दिए हैं।
1: श्रोताओं, उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेश कैसा लग रहा था, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रहा हो।
0: किसी प्रकार राजा कैकेयी के पास गए और कोमल वाणी में बोले,
2: प्राण प्रिय, तुम किस लिए रूठी हो? हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बता। अनहित तोर प्रिया केई कीन्हा, केई दुई सिर केई जम चैलीन्हा। कहू केही रंग कही करौ नरेसु, कहू केही नृपही निकासो देसु। प्रिय, देवता भी अगर तुम्हारा शत्रु होगा तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। कीड़े मकौड़ों के समान वे सारे नर नारी तो चीज ही क्या है। सुंदरी, तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो, मेरा मन तो सदा तुम्हारे मुखचंद्र का चकोर है। प्रिय, मेरी भुजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तुम्हारे अधीन है। मैं सच कहता हूं, मुझे राम की सौगंध है, मैं तुमसे कुछ भी कपट करके नहीं कह रहा। तुम हंसो और प्रसन्नता के साथ मन चाहा मांग लो, अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजाओ। प्रिय, अवसर को अवसर तो मन में विचारो। भामिनी, भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। मैं कल ही राम को युवराज पर दे रहा हूं, सुनैने तुम मंगल साज सजा लो।
3: मांगु मांगु पै कहो पिए, कबहु न देहु न लेहु। आपने दो वरदान देने को कहा था, मुझे तो उनके मिलने में भी संदेह है।
2: अब मैं तुम्हारा मर्म समझा, मान करना तुम्हें परम प्रिय है ना? तुमने उन वरों को धरोहर के रूप में रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं। मेरा भूल जाने का स्वभाव तुम जानती ही हो, मुझे भी याद नहीं रहा। अब तुम झूठे हो, हम ही दोष जनी देहु, दुई के चार मांगी मकुले हो। तुम जानती ही हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। और नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम हो ही कि कोटिक गुंजा। प्रिय, एक तो सत्य स्वयं ही सारे उत्तम पुण्यों का मूल है, उस पर मेरे मुंह से राम की शपथ निकल पड़ी है।
3: तो सुनहु प्राण प्रिय, भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका।
2: अच्छा
3: नाथ, दूसरा वर मैं हाथ जोड़ कर मांगती हूँ। हाँ। मेरा मनोरथ पूरा कीजिए।
2: हाँ।
3: तापस वेश विशेष उदासी, चौदह बरिस राम बनवासी।
2: मोर मनोरथ सुंदर फूला, भरत करिणी जिमि हाथे समूल। अब सुझा

0: कह न सी अचल विपत्ति कह नहीं। आह क्या होने को था और क्या हो गया।
1: भरत तो कोई राउर पूत न हो ही, आने हूँ मोल बिसाही की मोही। क्या मैं आपकी विवाहिता नहीं हूँ जो मेरी बातें आपको बाण की तरह लगी। अगर आपको ऐसा ही करना था तो पहले ही सोच समझ कर बात करते। उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुकुल में सत्य प्रतिज्ञा नाम से प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य सराही कहे वर देना, जाने हूँ ले ही मांगी चबेना। राजा शिवी दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन को निभाया।
0: इससे कैसी कठोर परिस्थिति पैदा कर दी कि उससे बच निकलना ही मेरे लिए कठिन हो गया। क्या सचमुच ही ये मेरे प्राण लेकर रहेगी? विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरे वचन कैसे कह रही हो? मोरे मारा तू राम दुई आखी, सत्य कहूं करी संग करू साथी। मैं सवेरा होते ही दूत भेजूंगा, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। शुभ मुहूर्त निकालकर सब तैयारी करके घोषणा पूर्वक मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है, भरत को तो वे बहुत प्रेम करते हैं। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, इसलिए बड़े को राजतिलक देने जा रहा था। राम सपत सत कहूं सुभाऊ, राम मातु कछु कहे उन्हें काहू। मैं सब कीनी तो ही बिन पूछे, ते ही ते परे हो मनोरथ छूछे। प्रिय आप क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सजा लो, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख है कि तुमने दूसरा वरदान असमंजस भरा मांगा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध बताओ। हर कोई तो कहता है कि राम बड़े साधु हैं। तुम स्वयं भी राम की सराहना किया करती थी और उन पर प्रेम भी रखती थी। अब तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। भला जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है, वो माता के प्रतिकूल आचरण कैसे करेगा? प्रिय हंसो और क्रोध छोड़कर उचित अनुचित का विचार करके भर मांगो, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरुबारी बिहीना, मनी बिनु फनिक जिए दुख दीना। कहूं सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समझी देख जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आसीना।
1: आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है वो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मोहिना बहुत प्रपंच सुहाही, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात भली सब पहचाने। कौसल्या ने जैसा भी भला चाहा है, मैं भी उसे वैसा ही फल दूंगी, वो भी जीवन भर याद रखेगी। होत प्रातु मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाहि मोर मरन, राउर अजस नृप समझिए मन मारी।

0: क्रोध की नदी की तरह उफनती हुई कैकेयी को देखकर राजा दशरथ ने समझ लिया कि बात सच्ची है और अब तियमिस मींच उसीस पर नाची। अंततो गत्वा राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उससे कहा,
1: चली दिन कर कुल हो सी कुठारी, मांगू मात अभी ही देव तो ही, राम विरह जनि मार असी मोही, राखु राम कहूं जही तही भाती, नाही तो जरही जन्म भरी छाती।
2: अगर अंत में आपको ऐसा ही करना था तो मांग मांग तुम कही बल कहू, दुई की होई एक समय फुआला, हसब ठठाई फुलाऊ बगाला, दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या ये संभव है कि लड़ाई में बहादुरी भी दिखाएं और कहीं चोट भी न लगे? अब या तो अपने वचन छोड़ दीजिए या फिर धीरज रखिए, इस प्रकार असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं।
1: तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है, मेरा काल तुझे पिशाच होकर लगा, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। भरत तो फूल कर भी राजपद नहीं चाहता, तेरी कुबुद्धि में होनहार बसी है, ये सब मेरे पापों का ही फल है कि कुसमय में विधाता विपरीत हो गया। मगर याद रखना, ये अयोध्या जिसे तू आज उजाड़ रही है फिर फली प्रकार बसेगी, समस्त गुणों के धाम राम की प्रभुता भी होगी, सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में राम की बढ़ाई होगी। केवल केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, किसी भी तरह नहीं जाएगा। अब तो ही निकला करूं सोई, लोचनोट बैठू मुखोई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मुझसे कुछ न कहना, अरिया भागनी अंत में तू पछताएगी कि जो तू तांत के लिए गाय को मार रही है। हा राम हा राम। भगवान करे सवेरा ही ना हो, ये रात इसी तरह बनी रहे, भगवान सबको ऐसी सुबुद्धि दे कि कोई भी राम से इस बात की चर्चा न करे। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप उदित न हो, अयोध्या को व्याकुल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी।

0: मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अभी आप विशेष नाटकमाला की तीसरी कड़ी सुन रहे थे। लेखक तथा निर्देशक थे श्री विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। संगीत रचना श्री सतीश भाटिया ने और ध्वनि संयोजन श्री कृष्ण कुमार नरूला तथा श्री सुदर्शन कुमार ने किया। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री सुरेश शास्त्री, वाई के शास्त्री, सी एस नागर, आशीष सिन्हा, श्रीमती सरोज भार्गव और श्रीमती मंजू मैनी। संगीतांश के कलाकार थे श्रीमती पुष्पा अवस्थी, कुमारी शांता सक्सेना, श्री अमिताभ और श्री मनमोहन पहाड़ी। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।
1: कल इसी समय इस विशेष नाटक की चौथी कड़ी प्रसारित की जाएगी।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दे। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।